0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रसारण सभा। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता,

0: प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सर्वप्रथम सुन लेते हैं ये मातृवंदना।

समूह स्वर में ये मातृवंदना भी आप सुन रहे थे। रचना थी डॉक्टर ललित मोहन की। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये भजन।

पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के स्वरों में ये कृष्ण भजन अभी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब से कुछ ही समय पश्चात प्रातः 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर होगा रंजना जोगलेकर का भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 6:40 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 6:55 पर। सुबह 7 सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सुबह। कृषि संकेत आप सुन सकेंगे प्रातः 7:05 पर। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 7:10 पर। सुबह 7:20 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। संगीत सरिता ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:45।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा समाचार प्रभात। समय होगा सुबह के 8 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 8:15 पर। प्रातः 8:30 पर सुनिएगा पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। विषय होगा योग की वैज्ञानिकता व वर्तमान वैश्विक समस्याओं से समाधान में उपयोगिता। स्वर होगा डॉक्टर वंदना गुप्ता का। जिले की चिट्ठी आप सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। समय होगा सुबह के 10 बजे। शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी आप सुन सकेंगे सुबह 10:05 पर। आपकी पसंद यह कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:30 पर।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे सुबह 11 बजे से। प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। समय होगा दोपहर के 2:10। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा दोपहर समाचार। समय होगा दोपहर के 2:15। इस घंटे की सुर्खियां आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे शाम 5 बजे से। युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे शाम 5:02 पर। शाम 5:30 पर सुनिएगा संगीत सरिता।

चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे से, शाम 6:15 पर सुनिएगा संगीत सरिता। सदाबहार गीत ये कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर, शाम 6:45 पर सुनिएगा लोक रंग। हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 7 बजे से, आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुनिएगा शाम 7:10 पर। खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी समय याद रखिएगा शाम 7:20।

रात्रि 8 बजे सुनिएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण होगा। विषय होगा आतंकवाद। रात्रि 8:35 पर सुनिएगा संगीत सरिता। समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:45 पर मन चाहे गीत यह कार्यक्रम सुनिएगा। रात्रि 9 बजे से कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर है रंजना जोगलेकर का।

श्री रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर था रंजना जोगलेकर का। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

अनाड़ी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज थी मुकेश की, गीत लिखा था शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब सुनिए कार्यक्रम में यह गीत।

छोटी बहन। इस फिल्म से यह गीत अभी आपने सुना। आवाज थी लता मंगेशकर की, तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने, गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला और अंतिम गीत।

मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है।

0: पार इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थीं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था ओपी नैयर का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनम् संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानाम् प्राथमिकतानाम् भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायाम् यात्रायाम् श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरम् कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। 52वां G7 शिखर सम्मेलनम् ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानाम् अर्थव्यवस्थानाम् नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयम् कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्य मंत्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मंत्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मंत्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्य परीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सुबह। सुबह सुबह सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आप चाहे जिस उम्र के हों, दुनिया में कहीं भी रहते हों, या आपके जीवन का चाहे कोई भी लक्ष्य हो, लेकिन लगभग हर किसी के जीवन का लक्ष्य बस अपने जीवन में खुश रहना और सफलता हासिल करना होता है। सफलता पाने या सफल होने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना और अपनी एक पहचान बनाना बस नहीं होता। इसका मतलब तो अपने जुनून का पीछा करना, एक मकसद के साथ जीना और अपने आज में खुश रहना होता है। आप सफलता पाने की राह पर चलना शुरू करें, इससे पहले ज़रूरी है कि आप आपके लिए सफलता के मायने को परिभाषित करें। हालांकि आप आपके जीवन में आखिर क्या करना चाहते हैं ये समझ पाने में आपके कई साल गुजर सकते हैं। अपने जुनून, अपनी रुचियों और अपनी अहमियत को पहचान कर आपको अपने जीवन का लक्ष्य बनाने में और अपने जीवन के अर्थ को पहचान देने में मदद होगी। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, वो इंसान बनने के लिए जो आप बनना चाहते हैं, आपको पहले आपके काम पर ध्यान देना शुरू करना होगा। खुद से सवाल करें, मैं ये जो कुछ भी करने वाला हूँ, क्या ये मुझे उस जगह लेकर जाएगा जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी में पहुँचना चाहता हूँ? सिर्फ योजना बनाना ही काफ़ी नहीं होता, अपनी बात पर अड़े रहना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी से कहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो उसे ज़रूर पूरा करें। किसी अहम काम को आखिरी वक्त के लिए टालते रहने की वजह से आपको बेवजह तनाव ही मिलेगा और साथ ही गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएंगी। अपने वक्त को कुछ इस तरह से व्यवस्थित करें ताकि आपके पास में किसी भी काम को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए भरपूर समय रह सके। अगर आप लगातार अपने गुजरे वक्त को याद करेंगे या अपने आने वाले कल के बारे में सोचते रहेंगे तो इसकी वजह से आप अपने आज को पूरी तरह से जीना भूल जाएंगे। एक बात याद रखिए, अपने नकारात्मक विचारों की ओर ध्यान देना शुरू कर दें ताकि आप उनसे उबर पाएं और अपने आज को जीना शुरू कर सकें। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग अपनी सफलता की तुलना अपने आसपास के लोगों की सफलता से करते हैं। अगर आप भी सफलता महसूस करना चाहते हैं और खुश होना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन के साथ करना बंद कर दें। आपके पास में जितना भी जो कुछ है उसे ही सराहने में समय बिताएं। चीज़ों से परे जाकर सोचें, अपने पसंदीदा प्यारे लोगों की सराहना करें और अपने खुशी भरे पलों को याद करें और बढ़ जाएं उस ओर जहां हम खुद को सफल बनाना चाहते हैं। निश्चित ही एक दिन वो आता है जब हमारी मेहनत रंग लाती है और हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। श्रोताओं, सुबह सुबह में आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि संकेत। विषय है भारत सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए चलाई जा रही योजनाएं। विशेषज्ञ स्वर है डॉक्टर नीलेश शाह का।
1: शासन द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन पिछले 12 सालों में किया गया है और जिसका उल्लेखनीय प्रभाव पशुधन क्षेत्र में देखने को मिला है। मुख्य रूप से जो योजनाएं संचालित की गई हैं विगत 12 वर्षों में, एक तो है NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न संक्रामक बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है, जिससे विभिन्न बीमारियों का मतलब संक्रमण रोका जाता है तथा इससे पशु स्वस्थ रहते हैं और उनकी उत्पादकता में सुधार होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है भारत सरकार का NAIP, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। विभिन्न घटक हैं इस कार्यक्रम के, जिसके अंतर्गत नस्ल सुधार कार्यक्रम किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्वालिटी सीमन का सप्लाई होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का सप्लाई है और

0: भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कृत्रिम गर्भाधान या नस्ल सुधार के लिए उनका प्रदाय किया जाता है, इसके लिए स्पेसिफिक पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग होती है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मोबाइल वेटनरी यूनिट। मोबाइल वेटनरी यूनिट से आशय है चलित पशु चिकित्सा इकाई का संचालन होता है। प्रत्येक विकास खंड में एक मोबाइल यूनिट प्रदाय की गई है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1962 1962 टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस नंबर पर पशुपालक फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। पशुपालकों के फोन करने के उपरांत इस व्हीकल के द्वारा और इसमें पदस्थ हमले के द्वारा घर पर पहुंचकर उपचार की सुविधाएं दी जाती हैं। इसी के साथ में और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है जिसके अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर गोट फार्मिंग है या पिक फार्मिंग है या इसके और भी बहुत सारे साइलेज मेकिंग है, कई कंपोनेंट हैं और उसमें अलग अलग प्रतिशत सब्सिडी का रहता है। तो ये भी उद्यमिता विकास के लिए ये प्रोग्राम भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है पशुपालकों के लिए। अभी तुरंत में एक NDLM आया है, नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन, इसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो विगत 12 वर्षों में केंद्र शासन द्वारा जो पशुपालन से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है उसके उल्लेखनीय असर देखने को मिले हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। विषय था भारत सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए चलाई जा रही योजनाएं। विशेषज्ञ सर था डॉक्टर नीलेश शाहकर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को श्री मोदी ने गर्मजोशी, विश्वास और भारत तथा स्लोवाकिया के लोगों को एकजुट करने वाले प्रेम का प्रमाण बताया। इससे पहले उन्होंने भारत स्लोवाकिया संबंधों को लेकर संबोधित करते हुए कहा कि
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। इस सत्र में G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों के प्रमुखों और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर फ्रांस के एवियन शहर का दौरा भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में 13वीं बार हिस्सा ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम कल घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि पिछले वर्ष 1087 रिक्तियां थीं और मुख्य परीक्षा के लिए 14000 से अधिक उम्मीदवारों को चयन किया गया था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मंत्रालय में हुई बैठक में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 6-7 माह में बड़े त्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनाए जाएंगे। ये सभी त्यौहार हमारी धार्मिक आस्थाओं और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक हैं। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करे। प्रदेश में वर्ष 2025-26 की कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये 23 जून तक चलेगी। इस परीक्षा में सत्र 2025-26 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदेश भर में कुल 2795 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। कक्षा 5वीं की पुनः परीक्षा में लगभग 1,17,000 से अधिक और कक्षा 8वीं के लगभग 1,32,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश को एग्रो सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और जर्मन सरकार समर्थित इंडो जर्मन एग्री वोल्टाइक सहयोग परियोजना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया। इसमें बताया गया कि एग्री वोल्टाइक कृषि एवं सौर ऊर्जा के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया एक संगठन है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर खेती के साथ साथ उसी खेत में ही सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, ताकि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता कम हो, खाद्य सुरक्षा बनी रहे तथा भूमि संबंधी विवादों से भी बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के शीर्षक से एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: छत्तीसगढ़ में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 12 से 14 जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 39 पदक अर्जित किए। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेटों और बेटियों ने सभी 4 वर्गों में चैंपियनशिप जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून इस हफ्ते दस्तक दे सकता है। उससे पहले राज्य के बड़े हिस्से में प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल, ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कन्या क्रीड़ा परिसर में बड़ी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत छात्राओं का चयन 22 जून से 26 जून तक किया जाएगा। नर्मदापुरम के पचमढ़ी वायसन लॉज में आज उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जिला प्रशासन के द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा पन्ना के पवई विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम में संवाद करेंगे। मंडला में आज समान नागरिक संहिता के उच्च स्तरीय समिति सदस्य बुधपाल सिंह आरडी कॉलेज में आयोजित जन परामर्श समिति बैठक में शामिल होंगे। डिंडौरी में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान करंजिया में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। सतना में पल्स पोलियो अभियान के लिए कुल 1809 टीकाकरण बूथ, 7 ट्रांजिट बूथ और 26 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। और आगरमालवा जिले के कानड़ स्थित प्राचीन हनुमान बावड़ी पर बावड़ी उत्सव और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे फ्रांस। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने का किया आह्वान। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर और भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है कार्यक्रम मन चाहे गीत का, आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: दीवाना।
1: इस फिल्म से यह गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी विनोद राठौर, अलका याग्निक की। गीत लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी थी छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल ने। देवरी जिला सागर से परमलाल विश्वकर्मा, दशरथ, मनोज, पूना, आरती, दीपेश, जागृति, मानवी, हर्षिता, तनु, मनु और आपके परिवार के सभी सदस्य। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ, निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू, तरुण यादव, श्रीनिका और श्रीनिजा। खरगोन सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, राजकुमार, मूसा, सुदामा, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप और आपके सभी साथी। खैरागढ़, लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल, भीमटे, सुशीला, मेघा, नेहा, यीशु और आपके सभी साथी।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

संगीत इस फिल्म से, यह गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें थीं सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की, शब्द रचना थी संतोष आनंद की, इस गीत को संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने, फरमाइश थी आप सभी की। ग्राम बाघामुड़ा कुमा खान छत्तीसगढ़ से, प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी प्रकाश और यहीं से गायत्री यशवर्धन यशस्वी देवांगन और आपके सभी साथी। बलोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर अजय तुषार देव डॉली बेबी प्रभा देवी और आपके सभी साथी। दुर्ग से संजय साहू सुजाता शशांक सीमा और आपके परिवार के सभी सदस्य। अमावनी जिला सागर से गुड्डू तिवारी पूजा नारायण प्रसाद योगिता वैष्णवी उर्मिला और आपके सभी साथी। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार और आपके परिवार के सभी सदस्य। और अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

मीरा का मोहन। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की। गीत लिखा था इंदिवर ने, संगीत था अरुण पोडवाल का। फरमाइश थी आप सभी की। अमरावती से हीरामण शिंदे, शीला देवी और सिद्धार्थ गोंडाने। पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार, भगत, श्वेता, किशु, तासु, अर्णव, सत्यम और आपके सभी साथी। अकोला से अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश, अधीरा, राजवी और आपके परिवार के सभी सदस्य। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति, रोहताश, सोनम सिंह, अनामिका और आपके सभी साथी। इसी के साथ कार्यक्रम मन चाहेगी तब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए संगीत सरिता। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

सोनू निगम की आवाज़ में यह गीत अभी आपने सुना, और अब सुनिए कार्यक्रम में यह गीत।

लकी अली की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना और इसी गीत के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियॉन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्करे तैयबा, जैश-ए- मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा

0: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
1: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत।
2: अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
4: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुरेश चंद्र तिवारी से ये लोक भजन।

सबरी घर बार से, हाँ सबरी घर बार से, बेदोरे घर बार से, कुबजा घर बार से, अरे कुबजा घर बार से, जब

गण का घर बरसे सुदामा घर बरसे, गण का घर बरसे सुदामा घर बरसे, हाँ गण का घर बरसे सुदामा घर बरसे।

और अब सुनिए आलोक जैन से ये जल बचत लोकगीत।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए देवी सिंह राजपूत से ये लोक शैलीबद्ध गीत।

0: इस लोक शैलीबद्ध गीत के साथ लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए पॉडकास्ट विथ आकाशवाणी सागर। विषय है योग की वैज्ञानिकता व वर्तमान वैश्विक समस्याओं के समाधान में उपयोगिता। गेस्ट हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता, भेंट करता है दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं पॉडकास्ट विथ आकाशवाणी सागर।
1: नमस्कार, कार्यक्रम पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद, और हमसे बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता। आप आयुर्वेद चिकित्सक हैं, समाज सेवी हैं, और समाज के कई आयाम पे आप काम करती हैं। और जिस विषय के परिप्रेक्ष्य में हमने आज आपको आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में बातचीत के लिए, वो विषय है विश्व योग दिवस। योग भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अमूल्य देन है, और ये एक तरीके से संपूर्ण जीवन पद्धति है। योग के बारे में और विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे मैम। सबसे पहले योग की आपकी जो व्यक्तिगत निजी यात्रा रही है, ताकि श्रोताओं को एक झलक भी मिले कि योग में आप कितना दखल रखती हैं, आप क्या बताना चाहेंगी? आपकी योग यात्रा कब से शुरू हुई और आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या परिवर्तन महसूस हुआ?
2: सबसे पहले तो सागर आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। योग की यात्रा तो बचपन से ही प्रारंभ हो गई, क्योंकि मेरे बाबा जी भी योग प्राणायाम करते थे। वो हम लोगों को विरासत में मिला, और शिक्षा के साथ योग की शिक्षा भी ग्रहण करी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हमने योग में डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन योग साइंस, और बचपन से अब तक यात्रा सतत चल रही है। और इसी सतत के क्रम में परिवार से मिला हुआ है, तो आज भी हमारी 82 वर्षीय माता जी पूर्ण चैतन्यता के साथ, उनकी राइटिंग आप देखिए क्या खूबसूरत है, बोलना, लिखना, पढ़ना, स्मरण शक्ति, सब कुछ योग की वजह से, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे प्रतिदिन योग और प्राणायाम करती हैं। वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
1: 82 वर्ष की उम्र में योग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आपने बताया कि

0: पूर्ण चैतन्यता के साथ, ये दिखाता है अपने आप में कि योग के क्या अद्भुत परिणाम हैं।
1: बिल्कुल।
0: और ये बात तब से आप बता रही हैं जब योग को बहुत ज्यादा प्रभावशाली माध्यम के रूप में नहीं लिया जाता था।
1: बिल्कुल।
0: 11 दिसंबर 2015 से योग को पूरे दुनिया में पहुंचाया गया, खासकर जब से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का दिन तय किया, तब से पूरी दुनिया ने इसको सामूहिक रूप से 21 जून के दिन मनाना स्वीकार किया। और आगे हम इसमें जानना चाहेंगे मैम कि योग विषय की बात हम करना चाहें
1: जी,
0: योग का क्या महत्व है संपूर्ण मानव समुदाय की, यदि हम बात करें मानव समाज की
1: जी
0: बात
1: हाँ,
0: करें
1: जी हाँ।
0: क्यों करना जरूरी है और इससे क्या लाभ मिलता है?
1: देखिए, पहले तो आप उसके शब्द के अर्थ पे ही जाएं तो योग है, योग का अर्थ है जोड़ना, और योग की एक परिभाषा है युज्यते अनेन इति योगा, जो हमको जोड़े तो वो योग है। और दूसरा है चित्तवृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि ने दिया है, जो हमारे विचार बार बार आते हैं और हमारे फोकस को डिस्टर्ब करते हैं, जो एकाग्रता आज विद्यार्थियों की समस्या है, तो उस परिभाषा को अगर हम लें तो वो एकाग्रता को देने वाला है। तो विद्यार्थियों के और जो लोग भी अपना एक महत्वपूर्ण बौद्धिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनकी एकाग्रता में योग बहुत लाभकारी है। फिर हम उसको अगर भौतिक रूप से शारीरिक रूप से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से अंग उपांगों दोनों के ऊपर योग सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक एक अंग, एक एक उपांग, सूक्ष्म व्यायाम, सारी चीजें पूरी तरीके से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखती हैं, जो आयुर्वेद में एक परिभाषा चरक ने दी हुई है, प्रसन्न आत्म इंद्री मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, कि जिसको बाद में WHO ने स्वीकार किया, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो ये तीनों चीज हमको देता है, और जब ये तीनों चीज देता है तो नकारात्मकता हमारे अंदर से कम होती है, व्यक्ति के अंदर से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो व्यक्ति सृजनात्मक होता है, विषम परिस्थितियों से हारता नहीं है, उसको अप्राप्य कुछ नहीं लगता है, अपने परिश्रम के बल पे, अपनी आत्मशक्ति के दम पे वो जिस भी क्षेत्र में जाता है एक धैर्य उसके अंदर धारण होता है और उसके बल पे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते, अपनी क्षमता रखता है।
0: व्यक्ति की जो संपूर्ण क्षमता है उस तक पहुंचाने में योग आपकी मदद करता है। और बहुत बेहतर आपने बताया कि शरीर, मन, आत्मा तीनों के शुद्धिकरण के लिए, एकाग्रता के लिए योग करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वंदना गुप्ता मैम, चूंकि आप योग साधिका होने के साथ साथ एक आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं
1: जी,
0: तो आज के समय में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं और कुछ असाध्य बीमारियां भी हैं जो मेडिकल साइंस में शायद उनका उपचार या इलाज कई बार कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है, लेकिन योग जैसी क्रिया से कई बार लोगों को बहुत चमत्कारी परिणाम मिले हैं। लोग बताते हैं कि योग करने से वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो
1: जी। देखिए, इसमें जो योग कहा गया है वो अष्टांग योग का वर्णन आता है, उसमें 8 अंग है योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 अंग है। उसमें से एक अंग आपका आसन और फिर दूसरा एक प्राणायाम, दो अंग पे हम लोग ज्यादा फोकस होते हैं, जबकि उसके साथ साथ जो यम कहा गया है, नियम कहा गया है, वो भी आवश्यक है अगर आप उसका और अच्छा जीवन में परिणाम चाहते हैं। तो हम आसन और प्राणायाम पे ही आते हैं। तो प्राणायाम क्यों आवश्यक कहा गया है? प्राण आयाम, अगर हम प्राणायाम करते तो मेरे प्राणों का आयाम बढ़ता है। कहते हैं कि जो भी जीव जितनी जल्दी सांस लेता है उसकी उतनी कम आयु होती है, और प्राणायाम क्या करता है, हमें दीर्घायु कैसे बनाता है, इसका वैज्ञानिक कारण है कि हमारे जो सांस लेने का बीच का अंतराल है उसको वो बढ़ा देता है,
0: लंबित कर देता है।
1: कहते हैं लोग सांसें निश्चित मिली हैं तो ठीक है, इसमें हमारी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ठीक है हमको 10 सांसें मिली हैं तो हम उसको बहुत लंबा कर लेंगे, एक एक सांस को, तो जीवन दीर्घायुष्य हो गया,
0: अवधि बढ़ा लेंगे।
1: तो प्राणायाम से ये है कि प्राणवायु जो है वही आधार है जीवन का। जब हम प्राणायाम करते हैं तो श्वसन तंत्र, जो हमारे वाइटल पार्ट्स हैं, ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन के साथ ही हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, ब्लड में जो भी चीजें वो अंग उपांगों तक जाती हैं, शरीर में पहुंचता है, तो सभी अंग उपांगों में। अब आप जानते ही हैं कि एनीमिया उन्मूलन गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ रहा है, वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रक्ताल्पता के कारण आप काम ही करने लायक नहीं रह जाते हो किसी भी। तो अब आप सोचिए कि इसी से योग प्राणायाम अगर हम करें तो हमारे अंग उपांगों को इतनी शक्ति मिलती है और हम

0: कई बीमारियों से अपने आप बच जाते हैं। तो प्राणायाम बहुत आवश्यक है, उससे आपकी जीवनी शक्ति मिलती है और जीवनी शक्ति के दम पे आप सब कर सकते हो। और व्यायाम आसन, अलग अलग आसन अलग अलग व्याधियों में,
1: व्याधियों के लिए
0: ये बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है। और कोई भी व्यक्ति कैसा भी बीमार हो, जैसे आपने कैंसर की बात कही या ऐसी व्याधियां जो असाध्य हैं जिनका अभी बहुत सी चीजों का इलाज परमानेंट क्योर नहीं है, तो उनके लिए भी आपका आसन प्राणायाम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से शरीर की टॉक्सिसिटी को हटाने के लिए आपका जो 5 प्राणायाम तो आप डेली कर सकते हैं, उद्गीत, ओम का उच्चारण, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, आपका इसके साथ कपालभाति करते हो, उज्जायी करते हो और भ्रामरी करते हो। तो भ्रामरी विशेष रूप से मेमोरी के लिए हो गया, कपालभाति विषाक्तता को सारे शरीर से बाहर करने के लिए, और जो मोटापा है आपका, मतलब पेट पे जमा हुआ हमारी वसा है, चर्बी है, उसको विशेष रूप से हटाने के लिए, और जो भी शरीर के अंदर गांठें हैं ये जब विषाक्तता को हटाता है तो जो भी उससे निर्मित चीजें हैं उनको बाहर करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज है सूर्य नमस्कार
1: जी।
0: जो 12 आसनों का एक वो होता है, और इसके लिए एक मेरी पंक्ति है, नमस्कार नित करो सूर्य को, हर एक व्याधि भगाता है, तन मन की नित शुद्धि करता, योग लक्ष्य का दाता है, योग कर्मसु कौशलम।
1: कंपोजिट एक एक्सरसाइज है,
0: बिल्कुल
1: सूर्य नमस्कार, 12 आसन उसमें शामिल होते हैं। अगर आपने सूर्य नमस्कार ही सिर्फ कर लिया तो आपको बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लाभ मिल जाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और बहुत अच्छी बात आपने ये बताई कि आपको दीर्घायु बनाने में योग कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राणायाम का इतना ज्यादा महत्व है। आप जो प्राणवायु लेते हैं तो रक्त कोशिकाओं में पूरे उत्तकों तक रक्त का जो प्रवाह है वो फैल जाता है,
0: बिल्कुल,
1: और पूरे कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता,
0: ऑक्सीजन को पहुंचता, ऑक्सीजन के साथ साथ सारी चीजें पहुंचती हैं।
1: बहुत साइंटिफिक चीजें हैं और आपने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको बताया। थोड़ा सा हम महिलाओं के ऊपर ही फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि आप महिला भी हैं, आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं, और बहुत लंबे समय से आप योग की साधना कर रही हैं। आपने बताया कि परिवार से विरासत के रूप में आपको ये विधा, ये शिक्षा, ये विज्ञान मिली है।
0: जी,
1: तो महिलाओं के लिए आप बताइए कि उनके लिए कौन से आसन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के कुछ खास प्रकार के रोग होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, उसको जो सही कर सकें, ट्रीटमेंट उनका कर सकें। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी क्या योग करना संभव है?
0: गर्भवती महिलाओं से ही शुरू होते हैं
1: जी।
0: गर्भवती महिलाओं के लिए एक निश्चित प्रकार का योग होता है, जैसे अब हम उसमें कपाल भांति करने लगे तो वो तो बच्चे को ही डिस्टर्ब कर देगा, तो हमको जानकारी के साथ कौन से हम आसन कर सकते हैं गर्भावस्था में उसका हमको ध्यान रखना है। आप प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, उद्गीत कर सकते हैं, ये आप प्राणायाम आराम से कर सकते हैं, मगर कपाल भांति आपको नहीं करना है गर्भावस्था में।
1: बेहतर हो कि प्रशिक्षित जो योग ट्रेनर हैं, आप उनकी देखरेख में, उनकी सुपरविजन में करें,
0: कुछ दिनों उनकी देखरेख में करने के बाद
1: आप स्वयं से करने में
0: सक्षम हो जाएंगे।
1: और ये सामान्य प्रसव की तरफ आपको लेके जा सकता है योग?
0: बिल्कुल लेके जा सकता है। सामान्य तो देखिए, प्रकृति ने सामान्य प्रसव की ही व्यवस्था कर रखी है। किसी भी प्राणी को देख लीजिए, किसकी सिजीरियन होती है मानव को छोड़ के, तो सामान्य प्रसव तो होना ही चाहिए, मगर हमारा कुछ इस प्रकार का रहन सहन, खान मान, दिनचर्या विशेष रूप से ऐसी हो गई है कि वो सामान्य प्रसव नहीं हो पाने की स्थिति में होता है, या फिर कोई कई बार रिस्क नहीं लेना चाहते सामान्य का, किसी कठिनाई के कारण कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस समय ऐसी इमरजेंसी बनती है कि आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। मगर आप अगर रेगुलर योग प्राणायाम आपके जीवन का हिस्सा है तो नॉर्मल प्रसव आपको होगा ही होगा, और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। योग आपको तंदुरुस्त रखता है, योग आपको मानसिक रूप से भी उस समय जो गर्भावस्था के दरमियान जो तनाव या समस्याएं आती हैं उससे निपटने में आपकी मदद करता है। सामान्य लड़कियों की, किशोरावस्था की लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में खासकर जो समस्याएं पीसीओडी या पीसीओएस की होती है उसको एड्रेस करने में या उसका ट्रीटमेंट करने में, उसका क्योर करने में, उसका इलाज करने में योग कितना सक्षम बनाता है आपको?
0: इसमें सबसे बड़ी चीज है कि योग के अंदर सभी प्रकार का आपको लाभ मिल सकता है, मगर उसको जीवन का अभिन्न हिस्सा अगर बना के रखते हैं तो। आप सोचे कोई चीज बहुत बड़ी हो गई और हमको तत्काल योग प्रभाव दे दे, अपना असर दे दे, तो ऐसा तो किसी भी जगह संभव नहीं। बहुत बढ़ गया है तो आपको दवाइयां भी असर नहीं कर रही हैं आपके ऊपर। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगी कि आप किसी भी तरीके से जीवन का अभिन्न हिस्सा इसको मान लीजिए, आधे घंटे दीजिए, 20 मिनट दीजिए, नहीं कर सकते सूर्य नमस्कार करिए, ग्रामीण

0: योग करने के लिए।
1: अब आप देखिए, जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उसमें शीतलीकरण व्यायाम है। तो अब शीतलीकरण आपने तुरंत कितनी बड़ी बॉडी को, आपने तुरंत जो गर्म हो रहा है उसको तुरंत आपने थोड़ा सा जीप को मोड़ के जो करते हैं उससे, तो ये कितनी बड़ी चीज है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो तुरंत बॉडी को इतना वो कर दे।
0: तनाव या स्ट्रेस होने पे भी लोग बोलते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप जहां हैं वहीं बैठे बैठे आराम से कर लीजिए।
1: ओम का उच्चारण करिए, ओम का, ओम के उच्चारण से आपकी शांति मन के अंदर एकदम रिलैक्सेशन होगा।
0: खिलाड़ियों को भी हमने कई बार देखा है कि वो मैदान के भीतर गहरी सांस लेकर के अपने आप को शांत करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: परिस्थिति के साथ सामान जैसे बिठाते हैं।
1: बिल्कुल, आदमी कहता ना आराम से सांस लो फिर बात करो, तो इस कहावत के पीछे का अर्थ ही गहरी सांस लो। गहरी सांस माने कि अच्छी ऑक्सीजन जाए, सोच समझ के आप जो कुछ कर रहे हो निर्णय ले पाओ, अपने लिए बेहतर सोच पाओ। तो गहरा श्वसन तो बहुत जरूरी है। लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता, वाइटल पार्ट्स, इसीलिए कहा गया है कि सांस के बिना आप कितनी देर रुक पाओगे।
0: योग कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में, प्रतिक्षण हमारे जीवन में शामिल है। उसे तरीके से करने की जरूरत है, उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, उस एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है, ताकि उसके असली लाभ को हम ग्रहण कर सकें।
1: बिल्कुल
0: मैडम, एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे। कई लोगों का ऐसा कहना है कि योग सिर्फ शारीरिक खींचतान है या शारीरिक व्यायाम है। आपने पहले भी ये स्पष्ट किया कि मन आत्मा शरीर के संतुलन को योग हम कहते हैं। वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे या इस थ्योरी को आप क्या कहना चाहेंगे कि शारीरिक व्यायाम सिर्फ योग नहीं है?
1: शारीरिक व्यायाम केवल समझना बहुत बड़ी भूल होगी, अज्ञानता होगी। ये भारत का बहुत बड़ा शोध कार्य है और जो अलग अलग हुआ था, महर्षि पतंजलि ने इसको एकत्रित करके सारा एक जगह दिया और
0: बिखरे हुए ज्ञान को
1: उन्होंने जन कल्याण के लिए एक जगह एकत्रित करके दिया। और इस पे रिसर्च आप देखिए इस तरीके से है कि एक एक पशु पक्षी की हैबिट्स पे, उनके स्वभाव पे अध्ययन किया गया, उनकी विशेषता पे अध्ययन किया गया और उसको अपना करके मानव शरीर कैसे उस तरीके की क्रिया को अपना करके अपने अंदर क्या क्षमता पैदा कर सकता है उस चीज को किया। जैसे उदाहरण के लिए मैं दे रही हूँ कि हाथी कुंजल करता है, हाथी पानी लेता है और उसको पूरा तेजी से निकाल देता है, इसको कुंजल बोलते हैं। अब उस कुंजल से वो इतने बड़े शरीर को स्वस्थ कैसे रखता है? तो इसको उन्होंने लिया, तो हम पानी को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद हम पूरा पानी निकाल देते हैं तो हमारी आंतें धुल जाती हैं। एक तो है हमारा पूरा आपका स्टमक वॉश होना, तो ये स्टमक वॉश हो जाता है, पूरा
0: डिटॉक्स हो जाते हैं,
1: डिटॉक्स जो भी आपका उसमें, इससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरा शंख प्रक्षालन आंतों को पूरा, तो आपने स्टमक तक कुंजल किया। देखिए शंख का अध्ययन किया, शंख में ऊपर से जल डालो तो घूमता घूमता नीचे निकल जाता है, तो इसी तरह शंख प्रक्षालन ऐसा है कि आपने जल ग्रहण किया और इसके बाद मल निकलना चालू होगा और फिर अंत में पानी ही पानी जाएगा। तो पूरी बॉडी को आपने जो है वो सर्विसिंग कर डाली और फिर उसका बेहतर परिणाम आपको
0: विषाक्त पदार्थों को
1: निकाल के उनकी क्षमताओं को बढ़ाना,
0: शुद्धिकरण
1: कर देना। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया कि इस तरह हमारे सारे आसन, चाहे मयूर आसन ले लीजिए, कुक्कुट आसन ले लीजिए, मंडूक आसन ले लीजिए, ऐसे करके जितने आपके मकर आसन ले लीजिए, भुजंग आसन ले लीजिए, इतने आसन जो आपके हैं वो सारे आपको एक एक एक अध्ययन रिसर्च के बाद आए हैं, उनका नाम भी आया है।
0: आज की पीढ़ी के हिसाब से हम कुछ समस्याओं की बात कर लेते हैं।
1: जी हाँ,
0: डिजिटल युग है,
1: बिल्कुल
0: आधुनिकीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है
1: जी,
0: उसका असर भी हमारे समाज में हमेशा देखने को मिलता
1: जी,
0: रहता
1: जी।
0: है। इसके साथ ही बहुत कम उम्र में युवाओं को खासकर जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तनाव की, अवसाद की, कई बार करियर को लेके, कई बार पढ़ाई को लेके, कई बार रोजगार को लेके, कई बार संबंधों को लेकर के भी पारिवारिक तनाव भी हो जाता है
1: जी।
0: ये तनाव या अवसाद की स्थिति से निपटने के लिए योग विज्ञान, योग विधा, ये कितनी कारगर है?
1: इस तनाव को पूरी तरीके से नियंत्रित करने में योग विधा कारगर है, मैं तो ये बात बोलूंगी आपको। और वो कैसे? क्योंकि आज जो हमको आपने जितनी भी समस्याएं बोली हैं, ये सारी भौतिकता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, भोगवादी संस्कृत से जुड़ी हुई समस्याएं, बहुत भौतिकवाद से जुड़ी समस्याएं। और योग क्या हमको आत्मिक की ओर भी ले जाता है? समस्याएं जो है, अगर हम उधर स्पिरिचुअली करेक्ट हो जाते हैं, आत्मिक रूप से हम करेक्ट हो जाते हैं, तो ये भौतिकवाद पे हमारा इससे पैदा समस्याएं ही नहीं होंगी। हमें हमारे अंदर ये विवेक आ जाता है हमको कितना, कितने समय तक किस चीज का कितनी दूर उपयोग करना है, तो वो नियंत्रण हमको आ जाता है। हमें रहना तो इसी युग में है, तो हमको डिजिटल कॉन्टेक्ट में कितनी देर रहना है, हमको स्क्रीन टाइम कितना करना है, हमको दिनचर्या को कैसे

0: रात में कितनी देर जगना है, सुबह हमें कितने देर उठना है, यही सब योग बताता है आपको। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात योग करता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए सुबह एक समय आसन प्राणायाम करने के लिए योग बताता है, तो आपकी दिनचर्या को भी व्यवस्थित करता है और दिनचर्या को वो प्रकृति के साथ व्यवस्थित करता है। जब आप प्रकृति के साथ रहेंगे तो आपको विकृत नहीं परेशान करेगी। हम प्रकृति से जैसे जैसे दूर हो रहे हैं वैसे वैसे ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर आप देर रात में सो रहे हो, सुबह आप कितना भी उठो, दिन भर आपके अंदर वो फ्रेशनेस रहेगी ही नहीं। तो ये सब कुछ हमको योग जोड़ता है और इन सारी समस्याओं का समाधान भी योग के अंदर है
1: जी।
0: जिसके लिए मैं ये एक लाइन कहना चाहूंगी कि मानवता का संरक्षक ये समरसता का चारा है, सबको जोड़ता है एक साथ। आपके अंदर जो अभी इस समय एक तनावपूर्ण वातावरण है ना, क्रोध बहुत तेजी से आता है लोगों को, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं,
1: धैर्य नहीं है,
0: धैर्य नहीं है, ये सब कुछ इंद्रिय नियंत्रण, एकादश इंद्रिय की बात करता है। और हठ योग देखिए, ये इंद्रिय नियंत्रण, जो हठ योग करते हैं उनका इंद्रिय नियंत्रण होता है कि वो एक ही मुद्रा में लंबे समय तक, या नहीं खाना है तो नहीं खाना है, खड़े रहना है एक मुद्रा में तो खड़े रहना, ये हठ योग है। तो ये आपको आत्म नियंत्रण सिखाता है। तो योग के अंदर क्या नहीं है, वो सब कुछ है जो आज के दौर की समस्याएं उनके समाधान के रूप में,
1: आज के दौर की समस्याओं के समाधान के लिए योग बहुत कारगर विज्ञान है, ऐसा आपका मानना है,
0: बिल्कुल
1: कहना है, और इसके परिणाम भी हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ परिलक्षित भी होते हैं। आखिरी में चलते चलते
0: जी,
1: आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं के बीच में कुछ संदेश जाए, और आपने बताया कि योग को एक अभियान के रूप में अपनाने की जरूरत है, टोलियां बनाएं, समूह बनाएं, समूह में योग करें, घर में घर के पारिवारिक सदस्यों के साथ आप योग करें ताकि योग के लाभ को आप सामूहिक रूप से महसूस कर सकें, एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? कई लोगों के पास बहाना होता है कि समय नहीं है, तो कितने समय तक करना सही होता है और कहाँ करना सही होता है, और कहाँ से वो मोटिवेशन या प्रेरणा लेकर के आए कि हमें योग डेली करना है, प्रतिदिन करना है, क्योंकि आपने कहा कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा, रोजमर्रा की बात बनानी पड़ेगी, तभी जाके योग के लाभ को आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है।
0: समय तो वही 24 घंटे सबके पास है, समय का प्रबंधन हमको आना चाहिए। जिस शरीर को हम दिन भर दौड़ाते हैं उसके लिए हमको रिचार्ज, मोबाइल को दिन भर चलाते हैं और फिर कहते हैं अब डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज पे लगाते हैं, हम भौतिक उससे जोड़ के बता रहे हैं। तो हमको जो है सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना है, कम से कम आप 5 से 6 के बीच तो उठ ही जाइए, और जब आप उस समय उठ जाएंगे तो 1 घंटा आप अपने लिए दीजिए, आसन प्राणायाम को दीजिए, उसी समय आपको इतना फ्रेशनेस आएगी, इतनी ताजगी महसूस होगी कि आपकी कार्यक्षमता में गुणांतर वृद्धि हो जाती है। जो काम आप कई घंटों में करते हैं वो कुछ घंटों में आप करने लगते हैं, तो ये आपकी कार्यक्षमता की वृद्धि करता है। तो सुबह का समय और शाम का समय, अगर आपको सुबह समय नहीं है आप शाम के समय भी वही 5 गोधूली बेला जिसको कहा जाता है, आप 5 से 7 के बीच में आप कर सकते हैं, उस समय फिर एक फ्रेशनेस, थकान दिन भर का वो निकलने के बाद शाम के समय
1: खाली
0: पेट तो उपयुक्त रहता ही है, क्योंकि आप सभी प्रकार के आसन कर रहे हो तो खाली पेट ही किया जाता है, कम से कम भोजन के 3 घंटे के पश्चात होना चाहिए आपका। तो ये तो हो गया कि आप किस समय करें, दूसरा आपको करना जरूरी है यदि आप अपने को अच्छा रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप दीर्घायुष जीवन जियो, आप सभी संसाधनों का उपयोग करके एक अच्छा समाज के अंदर अपना नाम करो, काम करो, आगे बढ़ो, परिवार को बेहतर दो, समाज को दो, राष्ट्र को दो, तो पहले तो जिसको देना है उसको देने वाला होना चाहिए। तो देने वाला होने के लिए आपको अपने को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तो दूसरी चीज ये हो गई। और तीसरा जो आपका विषय है, युवाओं के लिए संदेश है, आप कैरियर में जहां भी जाना चाहते हैं पहले इसको मन में सोच लीजिए। आप आसन प्राणायाम करके, हम कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो आप खुद करके देख लीजिए कुछ दिन, आपको नहीं अच्छा लगता है, परिणाम अच्छा नहीं आता, आप छोड़ दीजिएगा। और हम सीखे कहाँ से, हमको समय नहीं, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो आज बहुत अच्छे अच्छे संस्थान, निःशुल्क चल रहा है सब कुछ, लोग लगा करके उसको ध्यान प्राणायाम उन्हीं के साथ कर लेते हैं मार्गदर्शन में। तो हमको सब कुछ हमारे पास है, थाली में परसा हुआ है, हमको उठा के मुंह तक डालने की जरूरत है, और जब तक हम डालेंगे नहीं तब तक हमको परिणाम बेहतर।
1: बहुत बड़ी बात है आपने कहा कि थाली में परोसा हुआ है, क्योंकि ये पीढ़ियों का, पूर्वजों का बिखरा हुआ ज्ञान था,
0: बिल्कुल
1: उसको एक सूत्र किया गया और समाज के सामने आज है, और बस आपको उसका उपयोग करना है।
0: और सबसे बड़ी चीज है, जब विश्व ने इसको माना और जाना तब ना इसको विश्व योग दिवस

0: के रूप में स्वीकार किया।
1: बिल्कुल।
0: तो जब विश्व जिसको स्वीकार रहा है हमारी धरोहर को, तो हमें तो वैसे ही समझ लेना चाहिए कि नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण
1: चीज़, हम तो उसके संवाहक ही हैं, तो हमें अपने दैनिक जीवन में इसे लागू ही करना चाहिए। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा निवेश यदि आप किसी चीज में कर सकते हैं तो अपने स्वास्थ्य में कर सकते हैं और योग के निमित्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, कहा गया है पहला सुख निरोगी काया।
1: दीर्घायु जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए, प्राणी मात्र के लिए योग बहुत आवश्यक है। और बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि योग आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है और इस तरीके से संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। और शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए ये संतुलन पैदा करने का काम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और संपूर्ण जीवन की पद्धति को बेहतर बना देता है।
0: एक लाइन बोलना चाहूंगी कि भगवान कृष्ण को कर्म योगी कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग की परिभाषा दी है, योगः कर्मसु कौशलम्, कर्म की कुशलता ही योग है। तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम मिलेगा। आप अच्छा चाहते हैं, आपको अपने जीवन के लिए अच्छा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा चाहिए, आप योग को अपनाइए। तो इस तरीके से कर्म भी आप कुशल रहेंगे जब स्वस्थ रहेंगे।
1: कॉज एंड इफेक्ट की बात है, कार्य और परिणाम की बात है। आपके कार्य बेहतर रहेंगे तो परिणाम भी बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता मैम आपका। आप आयुर्वेद चिकित्सक हैं, समाज सेवी हैं और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपने योग की व्याख्या, योग की परिभाषा, योग के लाभ, इसको आपने बहुत सरल भाषा में हमारे श्रोताओं तक पहुँचाया। आपने समय निकाला हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको, सागर आकाशवाणी को और समस्त श्रोताओं को भी जो हमारी वार्ता को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद इस निवेदन के साथ कि इसको अपनाइए और अपना जीवन में परिणाम बहुत अच्छे पाइए।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। विषय था योग की वैज्ञानिकता व वर्तमान वैश्विक समस्याओं के समाधान में उपयोगिता। गेस्ट थी डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, भेंट करता दीपक निषाद। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।
3: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवे शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है 11:30 से 11:30 बजे तक।

0: साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। इस गाने को गाया था जैस्मीन सैंडलाज ने और इस गाने में रैप किया था रिबेल ने। इस गाने की लिरिक्स लिखी है जैस्मीन सैंडलाज ने और रिबेल, म्यूजिक है शाश्वत सचदेव का।

0: सिद्धार्थ बसरूर और प्रिया सरैया की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना। इस गाने को लिखा था प्रिया सरैया ने, इसके म्यूजिक तैयार किया है सचिन जिगर ने और फिल्म है अ जेंटलमैन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना बयां कर रहा है लाइफ के एक ऐसी फिलॉसफी जो बनाएगी आपके हर दिन को खास। शान और अनुष्का मनचंदाना की आवाज में गोलमाल 3 फिल्म से कुमार के बोल म्यूजिक है प्रीतम का।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: आज की फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं चोरी चोरी आके शोक।

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जन नाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। क्यों लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिल

0: बनाना ना।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: यह आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। रीवा जिले में इन दिनों गर्मी, उमस और बारिश की बूंदों वाले मिले जुले मौसम का असर देखा जा रहा है। कभी धूप की तेज तपन है तो कभी तेज आंधियां अपना असर दिखा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच भी तेज गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। जिले में 12 जून से जनकल्याण शिविर आयोजित कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले जनकल्याण शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए सभी अधिकारी क्षेत्र के विकासखंड मुख्यालयों तथा नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में पहुंचते हैं। अधिकारियों द्वारा शिविरों में विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। शिविरों में स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आयुष्मान योजना, संबल योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, व्यय वंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना तथा अन्य योजनाओं के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। आगामी 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर योग सप्ताह जिले में भी मनाया जा रहा है। केंद्रीय कारागार रीवा में बीते दिनों इसके तहत योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं उप जेल त्योथर में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस पर 14 जून को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल पर आयोजित रक्तदान शिविरों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। संजय गांधी अस्पताल में 50 यूनिट तथा ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा आयोजित शिविर में 7 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। जिले में इन दिनों खेत बचाओ अभियान में किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में जिले के सिरमौर विकासखंड के अंतर्गत बीरखाम गांव में कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगातार संघर्ष के बल पर युवा अपनी मंजिलों को हासिल कर ही लेते हैं, इसे ही चरितार्थ कर दिखाया है रीवा जिले के ग्राम बुसौली निवासी बाबूलाल रावत ने। बाबूलाल का चयन भारतीय सेना में हुआ है। बाबूलाल रावत शासकीय ITI रीवा के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र रहे हैं। बाबूलाल बताते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने पिछले 4 वर्षों तक लगातार कड़ा संघर्ष और अथक परिश्रम किया है। रीवा जिले में मछली पकड़ने पर आज से 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्षा काल में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी जलाशयों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। इस अवधि में मछली का शिकार, विनिमय तथा परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में संभागायुक्त सहित अन्य अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पौधे लगाए। कृषि विभाग द्वारा जिले भर में किसानों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। वन विभाग ने जयंती कुंज में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन विषय पर एक विशेष संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में मातृशक्तियों द्वारा पौधों का रोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। बीते दिनों रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला

में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किसानों से प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया। आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल एवं होमगार्ड के कुल 49 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत निर्मित रीवा जिला स्थित गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन टनल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूरे टनल में कुल 52 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इन कैमरों के माध्यम से टनल के प्रत्येक हिस्से पर नजर रखी जाएगी। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग रीवा स्थित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी। बीते दिनों रीवा के मेहरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 114 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी तथा उनके साथ 50 ऑफिशियल्स भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। रीवा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी। इसमें आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं किशोरी अमोनकर जी की आवाज में राग गौण सारंग। लीजिए प्रस्तुत है राग गौण सारंग।

0: किशोरी अमोनकर जी की आवाज़ में राग गौण सागर सारंग अभी आप सुन रहे थे। बंदिश तीन ताल में निबद्ध थी।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
0: और अब सुनिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब से राग भीम पलासी, बंदिश विलंबित एक ताल में निबद्ध है। बंदिश के बोल हैं अब तो बड़ी देर भई। आइए सुनते हैं राग भीम पलासी।

Sa ga ni ga ni ni sa ni sa ga ma sa ga ga sa ga ni ni.

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब से राग भीम पलासी। बंदिश विलंबित एक ताल में निबद्ध थी। इसके साथ शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंगनी राग रागनी अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला फरमाइशी गीत।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

20 साल बाद इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाज थी हेमंत कुमार की, गीत लिखा था शकील बदायूनी ने। इस गीत की फरमाइश की थी आप सभी ने। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास रानी और आपके सभी साथी। अकोला से अमोल इंगले, अर्चना सर्वेश, अधीर राजवी और आपके परिवार के सभी सदस्य। खंडवा से अब्दुल गफ्फार, जियाउल हक, उमर, राजेंद्र कटारी और आपके सभी साथी। शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु, रक्षित, राशि, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और आपके परिवार के सभी सदस्य। मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

सागर। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, संगीत था आर डी बर्मन का। फरमाइश थी आप सभी की महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता भाकरे और आपके सभी साथी। जाफराबाद से सुधाकर, राजे, जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी और आपके सभी साथी। रोहतक से पीयूष, सिक्का, कोयल, नानू, भाविक और आपके परिवार के सभी सदस्य। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, यमुना, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या, यहीं से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और आपके सभी साथी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

चमत्कार। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी कुमार सानू की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था अनु मलिक का। फरमाइश थी आप सभी की। सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या और आपके सभी साथियों ने। यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। चंडीगढ़ से सतीश, अनेजा, विमला और आपके सभी साथी। एटा से नबी हसन, नावेद, सुहेल, शहनाज, अनम, यशफ और रसीद। छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी और आपके सभी साथी। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

मैंने प्यार किया। इस फिल्म से यह गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। गीत लिखा था देव कोहली ने, संगीत था राम लक्ष्मण का। पसंदगी थी आप सभी की हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत और कमरजीत कौर। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया, राहुल, विनीत, सोनम। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल और आपके सभी साथी। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी और आपके सभी साथी। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये अगला और अंतिम फरमाइशी नगमा।

कहो ना प्यार है। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी लकी अली और रामिया की। गीत के बोल लिखे थे इब्राहिम अश्क ने, संगीत था राजेश रोशन का। पसंदगी थी आप सभी की। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी जगदीश जौहरी की और छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल। गुनौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल, रशिका, आकृति, वंशराज और आपके सभी साथी। इसी के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती भी झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं,

0: जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों,
1: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
2: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों, बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी, वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
5: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
6: सू
3: जी,
6: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
6: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
6: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
5: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
2: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
7: 15, 14
3: क्या?
5: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
7: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
7: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
2: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
7: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए।
3: क्या कम हो गए हैं?
7: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
5: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
7: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी। मेरी तरफ देखो
7: सू, ओनली 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
7: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
7: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ
7: मैं उसकी पत्तियाँ गिन रही हूँ।

0: मुझे लगता है,
1: क्या लगता है,
0: यही कि बस अब तीन पत्तियां बची हैं और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
2: क्या जॉन्सी,
0: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
0: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: हाँ
0: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
2: ओ जॉन्सी,
3: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
4: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
3: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
4: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
5: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
3: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
4: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
3: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
5: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
3: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
4: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
0: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
3: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
4: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने

0: सू से कहा।
1: सू, मेरी दोस्त।
2: हाँ जॉन्सी।
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
3: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू।
2: हाँ जॉन्सी।
1: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ,
1: हाँ,
2: मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
2: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
1: हाँ, हाँ।
0: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
2: ये लो, कॉफी पियो।
1: थैंक यू
2: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमन? वही बूढ़े कलाकार?
2: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही, मिस्टर बेरमन।
1: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
3: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
2: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा और सो उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
2: हाँ, उन्होंने बना दिया,
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
2: हाँ
1: मास्टरपीस,
2: हाँ
1: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
0: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

0: का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 11:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और लीजिए सुनिए अब ये गीत बरसात की रात फिल्म से।

0: बरसात की रात से कवाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रोशन का संगीत था।
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको

0: दीवाना एल्बम से आप सुन रहे थे सोनू निगम को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और साजिद वाजिद का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

आलिशाज लव नोट, ये एल्बम से आप अभी ये गीत सुन रहे थे। आलिशा की आवाज़ में और साथ दिया था बाबुल सुप्रियो ने, संदीप चौटा ने संगीत दिया, नितिन रायकवार ने इसे लिखा।

शान और कविता कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे। इस गीत में दिल चाहता है फिल्म का नाम था। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

तलत अजीज की आवाज में ये रचना अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये रंग दरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियान पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सिटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: Abtua.
1: ये है विविद भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

विजय और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। डिस्को डांसर फिल्म का नाम था अनजान, ने से लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। और आज इस प्रोग्राम में यादों की महफिल में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गीत, उनकी फिल्मों से गीत। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: गुलामी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, गुलजार ने इसे लिखा था। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
0: विविद भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फूल और अंगार फिल्म का नाम था। रानी मलिक ने इसे लिखा और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले की आवाज में, कुमार ने इसे लिखा था और अमर मोहिते का संगीत था। आप सुन रहे हैं इस वक्त यादों की महफिल विविध भारती से।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल, एआर रहमान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से। माफ कीजिए, श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत था।

लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, प्यार झुकता नहीं, फिल्म का नाम। एसएच बिहारी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

फिल्म गुरु से ये गीत अभी आप सुन रहे थे एआर रहमान और चिन्मयी की आवाजों में गुलजार ने इसे लिखा एआर रहमान का संगीत था। आज यादों की महफिल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत हमने आपको सुनवाए। इसके साथ ही ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, आज आपके सफर में आपके संग। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है, जिसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही साथ उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ये बताना है। तो ये तो आप बखूबी करते हैं और लंबी लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है, बहुत सारे गीत आ चुके हैं कि कौन कौन से होंगे। और आपको बता दें कि एक गीत की फरमाइश, या यूं कहें कि एक गीत को पहचाना है आपने बहुत अच्छे तरीके से, और हो सकता है उसी गीत से हमारी आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हो। देखते हैं आपकी ये लिस्ट और हमारी लिस्ट गीतों की कितनी मेल खाती है। साथ ही साथ उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो इबारत कुछ इस प्रकार है, कभी कभी यूं ही जिंदगी में मोहब्बत किसी अजनबी हसीना से मिल जाती है और दिल वीरान राहों पर ख्वाबों की रानी बनकर खिल जाता है। तुम्हारी याद में लिखे खतों के पन्नों पर हजारों रंग के नजारे उधर आते हैं जब तुम्हारे दो नयन मुस्कुराते हैं। मेरा दिल का चैन भी लौट आता है, ये जुल्फे रेशमी जाने कैसी खुशबू बिखेर जाती है। तुमने दिल को ऐसे चुरा लिया है कि सांसें भी तुम्हारा नाम गुनगुनाती है। बिगड़ जाए जब कोई बात, तेरा हाथ मेरे हाथ में हो अगर, तो शाम क्या हर रात फिर से सवेरा बन जाए। कतरा कतरा कर चलो हम एक कहानी में ढल जाएं। तो इबारत एक बार फिर से आपके सामने पढ़ दी है और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसका सबसे ज्यादा जिक्र मैसेजेस में आया है।

पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे बच जाओ।

एक अजनबी हसीना से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अजनबी फिल्म का नाम था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा गाना है जो हर किसी ने लिखा, यानी कि बहुत पॉपुलर, इसीलिए शुरुआत इसी गाने के साथ की गई क्योंकि आपकी जो फरमाइश है सर आंखों पर, और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि हमारी जो इबारत है उससे भी काफ़ी मॉडिफिकेशन करके या उससे इंस्पायर होके बहुत सारे इबारत लिखी गई है, कविता लिखी गई है, कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। हमारे श्रोतागण एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और साथ ही बोलते हैं कि सुरीला सफ़र कारवां के हम सफ़र साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है कि प्रेम प्रसंगों की श्रृंखला के इबारतों में आज भी दिल के किसी कोने में छुपी शून्यता को प्रेम की मीठी एहसासों से पूर्ण करने की खूबसूरत कोशिश की गई है। सच है, उम्र की सीमा बंधन को दरकिनार कर दिल जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अनायास ही मोहब्बत की दस्तक दे जाता है। कितनी खूबसूरत बात कही है। हमारे एक और श्रोता है, वो लिख रहे हैं, मुस्कुरा उठे हैं और कह रहे हैं कि हम तो उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां अजनबी हसीना तो क्या, अपनी हसीना भी भाव नहीं देती। अगर चाय मांगो तो जवाब नहीं मिलता, खुद से बना लो। ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी नोक झोंक भी तो जिंदगी में रंग भरती है, ये भी अलग तरह का रंग है। बिल्कुल। साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो वीरान राहों को गुलजार बना देता है वो है मोहब्बत का रंग, और साधारण दिनों को खास बना देता है वो है मोहब्बत का रंग। जब प्रेम दिल में घर कर लेता है तो खतों के पन्नों पर शब्द नहीं भावनाएं उतरती है। यादों के रंग इतने गहरे होते हैं कि हर पन्ना एक नई तस्वीर बन जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक प्रेमी जब प्रेमिका से मिलता है तो एक इत्तेफाक ही होता है, क्योंकि नज़र में तो बहुत आते हैं, अब जो नज़रों को भा जाए बस मोहब्बत वहीं पर कबूल कर ली जाती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है, और मोहब्बत ना हो तो फिर जिंदगी के रंग फीके लगने लगते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आप तो हमसे सवाल काफ़ी पूछती हैं, हालांकि हमने अभी सवाल पूछना शुरू नहीं किया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज की इबारत में सबसे अच्छा शब्द हमें क्या लगता है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल ये गीत

फिल्म कन्यादान से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और नीरज ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। साथ ही खतों की बात हुई, पत्रों की बात हुई इस गीत में, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने पत्र लिखने की जो आदत है उसे रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल हो गया है हर तरफ, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पुराने ज़माने की खुशबू, वो ख़त लिखना, वो पत्र भेजना, क्या अभी तक भी ऐसा होता है? तो चलिए आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने खत, पत्र या एक प्यारा सा जन्मदिन पर या किसी ऐसे मौके पर किसी को प्यारा से अपने हाथ से लिखा खत, कुछ पंक्तियाँ कब लिखी? मोबाइल पर नहीं, एसएमएस पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, लेकिन आपने एक डायरी पर किसी को लिखकर कब पत्र दिया और क्या लिखा? वो लिखना अपने आप के लिए भी हो सकता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम वो भावना है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या ईश्वर के प्रति स्नेह, समर्पण, विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ अपनापन होता है। प्रेम में स्वार्थ कम और दूसरे के सुख की चिंता अधिक होती है। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे 12 गीतों की लिखी हुई इबारत में तीसरे नंबर का लिखा हुआ गीत अभी अभी हमने शामिल किया कन्यादान फिल्म से। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देखते हैं कि कौन सी लिस्ट जो है हमारी पूरी होती है गीतों की, उन्होंने एक लिस्ट बना ली, तो वो तो ज़रूर देखते हैं कि मेल खाती है कि नहीं खाती, लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आपने पिछली बार किसे प्यार भरी पाती लिखी है। साथ ही साथ ये जो अगला गीत अभी आप सुनेंगे, उस गीत को कौन से फिल्म से लिया गया है और उसमें कौन अभिनेता और अभिनेत्री है जिस पर ये गीत फिल्माया गया है, मुझे जल्दी से लिख भेजिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका मैसेजेस पर।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे श्रोताओं ने कि स्वयंवर फिल्म से इस गीत को लिया गया है और शशि कपूर मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया ये गीत बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे सही जवाब मिले हमें इसके लिए। साथ ही साथ खतों की बात जहाँ चल रही है वहाँ पर भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पर पत्र पर नहीं लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ, वो भी पढ़कर समझकर वैसे ही लिख देते हैं, फुर्सत नहीं है बात करने की तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिये का इंतजार, लिफाफे की खुशबू और अपने पन से भरे अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस तरह रही कि कभी प्यार में खत लिखने और पैगाम भेजने का समय नहीं मिला। शादी हो गई, श्रीमती जी बन गई और अब उस मुकाम पर है उम्र के कि इसकी नौबत ही नहीं आ रही है। क्या जमाना था, खत के इंतजार में दिन गंवाते थे और आज कुछ सेकेंड में खत मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में सबसे खूबसूरत शब्द उन्हें खुशबू लगता है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हमारी वाली हसीना तो कहती है चाय बना रहे हो तो हमें भी पिला देना। क्या बात है, क्या बात है। ये प्यार, मिठास, नोकझोंक, यही तो जिंदगी का फलसफा है और यही जिंदगी में रंग भरता है। चलिए हमारे गीतों की लिस्ट पर पहुंचते हैं। जो अगला गीत अभी आपको सुनवाने जा रही हूं वो है कभी कभी फिल्म से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब सवाल ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोफेशन क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये आपको हमें बताना है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हमें बताइए।

0: देश जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और यह दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग और कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
0: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, जरूरी नहीं आपको पता हो उसके,
1: आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां है, वो हम नहीं जान पाते हैं।
0: बिल्कुल, इसी को लेकर छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे, लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वह कौवा।
1: बिल्कुल,
0: वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना, वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता, वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर देता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है
1: कि कौवा
0: कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
1: डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ा,
0: नहीं हटा किसी को देख के, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले, है ना, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं, आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
0: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए।
1: हाँ, ये होना चाहिए और होता भी है, कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना।
0: आरती,
1: तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है, और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
0: बिल्कुल, और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र पढ़ दिया और आपने एकदम
1: आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
0: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते, इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहे। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
0: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
1: तो उसका फायदा उठा जाता है। इसी जो कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को, इसीलिए कहते हैं।
0: तो इतने के कमजोर बने ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए,
1: बिल्कुल सही,
0: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है।

0: हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दे, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहे।
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश,
0: अपनी सफाई देना,
1: उसको वही सफाई अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
0: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है, या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
0: शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता है, जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पड़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सही होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
0: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
1: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
0: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
1: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी
0: सारी परेशानी खड़ी हो जाती है, फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
1: अंतराल का समय हो गया है,
0: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
1: जी,

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस आप हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और हम जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं।
1: आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया
1: है ना। एक थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज के सामने
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के पास मत जाइए
1: है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जा जाकर पूछते हैं है ना,
1: हम सही हैं, हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप
0: सही हैं,
1: बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने आपसे निर्णय लीजिए।
0: आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए है ना।
1: बिल्कुल।
0: और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना
1: जी, जी,
0: कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो कि हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा हम भावुकता में बह जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
1: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते
0: हैं
1: तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
0: ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं है ना। आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए।
1: और इसके जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: और बाद में हमें उसका पछतावा भी होता है।
0: हाँ।
1: लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो इस बात का हमें ध्यान रखे, बोलना
0: समझ
1: चाहिए।
0: के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
1: बिल्कुल।
0: और हम सब की आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है।
1: क्योंकि लगता है ना उनको, जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है तो लेकिन आपको लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
0: हाँ,
1: क्योंकि
0: चाटुकारिता में आता है। और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
1: और खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है।
0: बिल्कुल होती है। और मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
1: बिल्कुल। और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे।
0: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर
1: मैं तारीफ करती हूँ लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई की आपको चाटुकारिता लगी। मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ करती हूँ।
0: आगे उम्मीद रखती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद रखिए, अच्छे से तारीफ।
0: तो चलिए, आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक प्यारा संगीत सुनवा दें।
1: जी।

0: हाँ
1: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
0: अरे वाह बिल्कुल
1: जी। तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग की एक प्रतिष्ठित उद्यमी है।
0: हाँ बिल्कुल। और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है
1: जी। और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
0: बिल्कुल। और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉर्पोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है
1: जी। और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, पीपीसी सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा

0: है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। ये कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
1: क्या बात है।
0: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
1: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की, और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
0: बिल्कुल। और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
1: हाँ बिल्कुल। और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है, और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
0: बिल्कुल। उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है, और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक साबित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
1: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी नई पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
1: बिल्कुल। तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के, लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
1: अच्छा, आपको गीत की तलब हुई गई है चाय की तरह।
0: जी।

0: सिंगापुर के ढोल सुहावने। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देख के देखने में इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है पास, तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल, और फिर वापस करो, ये करो, गुस्सा
1: सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है, वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है, वो पास आकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और मजे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही उबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कैसा अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: चमकता है, सुंदर लगता है। हम उसकी तुलना करते हैं चेहरे से, चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना, चांद जैसा हमारा टुकड़ा।
0: जी जी जी, लेकिन जब से वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा
1: पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती है वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती है, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
0: तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलियामणा। जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत और रलियामणा मतलब सुहाना, यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
1: कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है, अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
0: वैसे ही सही है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, जैसे हमारे श्रोता जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। लेकिन तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी लगेगी।
0: ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी है, आप बिल्कुल हमसे मिलिए तो हम आपको और बहुत अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे,
1: जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जिनके खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और भी पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए, आपका एक श्रोता का हम लोगों ने दो बार उसको उनको पढ़ लिया। हाँ। उनको इतना ज्यादा इनका बढ़िया, उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना, वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है, जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्यूलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विद। गाइड में पहले पहले शुरू शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्ट का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे मगर उस चीज को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह, अरे मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, तो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे,

0: बेटा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने कोई और असिस्टेंट ने पूछा कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है, यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली है और मिल भी जाती है, इनमें तो कहाँ से। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, आप नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ तो चुपके से आके कह देते भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: दिल
1: दिया दर लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूं होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाला। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब, तो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
0: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर है, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
1: आदमी का? हाँ, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
0: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे,
1: वो समथिंग। हाँ,

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही, आपकी जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नजर इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनालिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे, मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ, साधना बहुत अच्छे थे, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो, इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो, ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं कर दिया अपनी फिल्म।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं, देखिए लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज्यादा ही वायलेंस पे बेस्ड होती थी, और कहानियां रट्टी पट्टी एक ही के, दो भाई हैं बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है, एक अच्छी नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो, इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है, और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की है बस।
0: वो फिल्में देख ले आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है, प्यासा में। मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी, मेरी फिल्में देखना। तो बोले टोरंटो में देखी। ओह, मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा? तो बोले नहीं, कॉलेज में देखी। मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई? तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है। तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं, और दोनों बच्चे मेरे, कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया, और साहब बीबी गुलाम का भी आया है, साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यारों को प्यार मिला,
0: हेमंत कुमार साहब की आवाज़।
1: हाँ, हेमंत कुमार साहब की आवाज़, वो बहुत अच्छा था।

0: वेदा जी, दिल दिया दर्द लिया में प्रहार साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक थे।
1: बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो ये बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, पहली बार सुना मैंने, ऐसे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वाज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: बिल्कुल
0: आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं, उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी

0: फिलॉसफी बहुत डीप थी yeah. उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी yeah. और आप मानोगे नहीं आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं yeah. तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे अपने संगम बन रही थी उसके बाद हाँ संगम बन रही थी उस वक्त वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे मसरूफ थे तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था कैसी बनी फिल्म क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था तो वही वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राजी और वाकई में मैंने देखा राजी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को लिटरली राजू राजू राजू यू नो बहुत और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने एक क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाते थे
1: वेदा जी इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था शंकर जयकिशन साहब का संगीत था इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं
0: हाँ मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था यू नो और सिंपल एंड वेरी स्वीट उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है ना अच्छी लगती है दिल को छूती है
1: कुछ चीजें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी कुछ उसी तरह की वो फिल्म है उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाएं
0: सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है ना हाथी है ना घोड़ा है हमें तो पैदल ही जाना है

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको, बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी, तो बड़े

0: टेंस रहते थे और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजी ने कहा, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कि जो गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा मैं मानती हूँ, मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं। तो बोले कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई।
1: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किस फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
0: अभिजान।
1: बंगला आपको आती
0: नहीं? उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी पुटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
1: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब?
0: हाँ, पाथर पंचली देखी थी।
1: अच्छा।
0: उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
1: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
0: हाँ, उन्होंने कहा जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्र चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है, जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सबने कोरस में कहा है वहीदा रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त ज़ाया होता था ना नेगेटिव ज़ाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है, इससे कोई चूड़ियाँ प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज़्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
2: सेल्युलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
1: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया, पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
0: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा, देखिए हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफ़ा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, या बहुत कम पैसे जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं।
1: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जे रोकम।
0: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट आग हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मजा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
0: नहीं, आई एग्री विद हिम, वो आई एग्री विद हिम, इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर।
1: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
0: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम, तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या

0: पैक अप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो, तो सब एक्टर्स हम साथ में पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियां अपने सीन सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों, मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफ़ी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा वही था जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को।

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो।
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी होगा वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा ये क्या फर्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं, कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोर दा भी मान गए हैं तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है ये। नहीं क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगी, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, मैंने सोचा गलत कहा कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, बाहर मनावर सब चलता है। तो फिर वो आई। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: का हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है, अंदर की जो पीड़ा है, वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को, वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है, जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से, अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना है इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था, क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस कर रही, ओ ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे, तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है, तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूं, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यू मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई।
0: वही गाना सुनते हैं?
1: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है।

0: कुछ।
1: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
2: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं। तो 20 साल बाद नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर के सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना, उन्होंने मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीबी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहां थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहां नहीं थी, वो फिजिकली थी, और फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी को उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो एक दो महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में। हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने फिल्म देखी, तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओ रियली, मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं का। तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
1: वहीदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें, या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया है, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे?
2: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात।

0: हुए थे जी, फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और खास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, म्यूनिसिपल स्कूल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूँकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ है, इसका नाम है प्रथम। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील। तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आ गए पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें, कि इसका फ़ायदा क्या है।
0: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
1: हाँ जी।
0: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन के दौरे पर फ्रांस के एवेन शहर पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ। एवेन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि युवा संसद इस लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए एक सशक्त मंच है। ये युवाओं में नेतृत्व, कर्तव्यबोध, तार्किक सोच और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने जैसे मूल्यों को विकसित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभ्यारण्य जाएंगे। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि आगामी UG पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। और मौसम विभाग ने प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महकती शाम का पैगाम लेकर आए हैं, कुछ नए ख्वाब और अरमान लेकर आए हैं। मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और साथ रहिए, क्योंकि हम आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त महिमा।

सक्सेना। तो आइए इस सुहानी शाम में संगीत के रंग घोलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म तारा रंपम से। इस गीत के गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं विशाल शेखर और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है के और श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों कहते हैं घर से दूर जाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अपनों के लिए देखे जाते हैं। कोई शहर बदलता है तो कोई देश, पर हर महीने घर पहुंचने वाली मेहनत की कमाई कई बड़े सपनों को जिंदा रखती है। जी हाँ दोस्तों, दूरियां सिर्फ जगहों की होती है, दिलों की नहीं। घर से दूर रहकर काम करने वाला हर युवा अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार की उम्मीदों को भी साथ लेकर चलता है। उसकी कमाई जब घर पहुंचती है ना, तो वो सिर्फ पैसे नहीं होते, बल्कि माता पिता के चेहरे की मुस्कान, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के बेहतर भविष्य का सहारा बन जाती है। इसी भावना को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। रेमिटेंस यानी अपने परिवार के लिए पैसे भेजना। दुनिया भर में लाखों लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर अवसरों की तलाश में अपने घरों से दूर रहते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार तक पहुंचाते हैं। यही मदद किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी बुजुर्ग के इलाज, किसी छोटे काम और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों का सहारा बनती है। साथियों, इस वर्ष की थीम है

रेमिटेंसेस फॉर रूरल रिजिलियंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी पारिवारिक सहयोग के जरिए गांव को मजबूत बनाना, नए कामों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। आज का युवा सिर्फ अपना भविष्य नहीं बना रहे बल्कि अपने परिवार और समाज की तरक्की में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अपनों के लिए किया गया हर छोटा प्रयास कई बड़े सपनों को सच कर सकता है, क्योंकि अपनों के लिए भेजी गई हर छोटी सी मदद सिर्फ जरूरत ही पूरी नहीं करती बल्कि सपनों को उड़ान भी देती है। इसी सोच और अपनेपन के साथ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस। तो दोस्तों, बातों का यह सिलसिला थोड़ी देर के लिए यहीं थामते हैं और सुरों की दुनिया में एक बार फिर से दस्तक देते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत फिल्म दे दनादन से राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

दोस्तों कहते हैं सफर की असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि उस सफर को समझदारी से तय करने में होती है। जरा सी सावधानी जहां जीवन को सुरक्षित बनाती है, वहीं छोटी छोटी अच्छी आदतें समय पर पैसे और ईंधन तीनों की बचत कर सकती है। दोस्तों आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वाहन हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं, लेकिन बढ़ती ईंधन की खपत और प्रदूषण हमारे सामने एक बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में स्मार्ट ड्राइविंग केवल एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हमारी जेब, हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य तीनों से जुड़ी हुई है। स्मार्ट ड्राइविंग का मतलब है जल्दबाजी नहीं, समझदारी। अक्सर हम तेज रफ्तार, बार बार ब्रेक लगाने या बिना जरूरत वाहन चालू रखने जैसी आदतों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही छोटी छोटी बातें ईंधन की खपत बढ़ा देती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो दोस्तों वाहन की समय पर सर्विस, सही हवा वाले टायर और संतुलित गति से चलने जैसी आदतें ईंधन की बचत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इतना ही नहीं, छोटी दूरी के लिए पैदल चलना या फिर साइकिल का उपयोग करना और एक ही दिशा में जाने पर कार पुलिंग या सार्वजनिक परिवहन को अपनाना भी एक समझदारी भरा कदम है। इससे न केवल ईंधन की बचत होती है बल्कि सड़क पर वाहनों की भीड़ और प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि दोस्तों आज का युवा बदलाव की ताकत रखता है और उसकी छोटी छोटी अच्छी आदतें समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। स्मार्ट ड्राइविंग अपनाकर हम न केवल अपने

खर्च को कम कर सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि समझदारी से किया गया हर सफर सिर्फ ईंधन की बचत नहीं करता बल्कि एक सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर भविष्य की राह भी बनाता है। इसीलिए सुरक्षित चलें, स्मार्ट चलें और अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर कल का निर्माण करें। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं फिल्म संगीत में अगला फिल्मी गीत फिल्म कलंक से। इस गीत में स्वर है अरिजीत सिंह के, इस गीत के संगीतकार हैं प्रीतम।

दोस्तों अब वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 4,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं 12 जून 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। योग्यता है उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप और अधिक जानकारी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की रोजगार सूचना। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत फिल्म बागी 2 से जुबिन नौटियाल की आवाज में।

दोस्तों यूं ही मन में ख्याल आया कि जून के महीने के इस मौसम की थोड़ी सी बात कर ली जाए। जून के महीने की शामों का अपना ही रंग होता है। दिन भर की धूप के बाद चलती हल्की हवाएं और आसमान में बिखरे बादल मन को एक अलग सा सुकून दे जाते हैं। और साथियों सच में ऐसे ही छोटे छोटे मौसमी रंग हमारी शामों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। अब दोस्तों देखिए ना, आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। हमें उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। अब चलते चलते सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म मौसम से राहत फतेह अली खान की आवाज में।

दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अब मुझे अपनी रेडियो दोस्त महिमा सक्सेना को दीजिए इजाजत और चलते चलते आपको एक आखिरी गीत सुनवाते हैं।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में मुजफ्फर वारसी का कलाम।

चित्रा सिंह की आवाज में अभी आपने गजल सुने और आइए कार्यक्रम संगीत सरिता में अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास की आवाज में रानी मलिक की लिखी ये गजल।

अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज़ में अभी अपनी बहुत ही दिलकश गज़ल सुनी। आइए गज़ल और सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। कलाम है पयाम सईदी का।

0: बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कार्यक्रम संगीत सरिता में आइए आप सुनते हैं चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में सुदर्शन फाकिर का कलाम।

चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब यहीं संपन्न होता है।

0: का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: अरे काय भैया, ये सब मोल लटकाए काय को दिए थे?
2: अब कहा बताएं भज्जा तुमकी, कोनो ये कहु परेशानी हो तो बतावे, ये तो राम धई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
1: अरे भैया ये सब का होगा, कुछ तो बताओ।
2: अब तुम्हें का बताएं भैया, कबहू जो ढोर बीमार, कबहू वो ढोर बीमार, कहूँ एक खोजा परेशानी, कहूँ वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
1: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगत है, ओ में आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
2: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, हाँ। मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20। हाँ, हाँ। और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845।
2: और सीधो लाख का कछु वो करना पड़े।
1: बड़े समझदार हो, इमे कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को, और सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया।

0: 9-7।
1: एक बीर फिर से बता दे बच्चा।
0: भैया फिर से लिख लो, इसमें कछु परेशानी नहीं। 9-7-7-0-4-3-2-2-9-7।
1: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लो तो फिर बात साहब।
0: अरे
1: अच्छा जा बताओ भज्जा। हाँ। ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
0: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कार्यक्रम संगीत सरिता अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत जो लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है इंसान।

किशोर कुमार की आवाज में इंसान फिल्म से अभी आपने एक गीत सुना और आइए आप सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है अंदाज, आवाज किशोर कुमार की, अल्फाज हसरत जयपुरी के, संगीत शंकर जयकिशन का।

अंदाज फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजों में काला पत्थर फिल्म का ये गीत जो लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है राजेश रोशन का।

काला पत्थर फिल्म से भी आपने बहुत ही सुहाना गीत सुना और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अब्बास टायरेवाला का लिखा गीत आसमां की आवाज़ में।

का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने

कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं नाजिया हसन की आवाज़ में ये गीत जो लिखा है अनवर खालिद ने।

0: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अमित कुमार की आवाज में नीलू निरंजना का लिखा ये गीत।

अमित कुमार की आवाज में भी आपने गीत सुना और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए आप सुनते हैं सदाबहार गीत। कार्यक्रम सदाबहार गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत। और जैसा कि आज हेमंत कुमार जी का जयंती वर्ष है, तो इनकी खूबसूरत मखमली आवाज़ में कुछ बहुत ही बेशकीमती गीत हैं। ऐसा ही एक गीत है, बहुत ही कमाल की पोएटिक फिल्म थी खामोशी, राजेश खन्ना साहब की फिल्म थी, इसमें धर्मेंद्र भी थे, वहीदा रहमान थी, और बहुत ही कमाल का के गीत लिखे थे गुलजार साहब ने। हेमंत कुमार ने इस फिल्म का संगीत दिया था। हेमंत कुमार की आवाज़ में सुनते हैं खामोशी फिल्म का ये गीत जो लिखा है गुलजार ने।

0: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यादगार और एक कमाल की फिल्म थी खामोशी। अभी इस फिल्म का गीत आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज़ में, और आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्माण भी किया था हेमंत कुमार ने। इसके साथ एक और फिल्म थी 20 साल बाद, ये भी अपने समय की एक बहुत ही कालजयी फिल्म थी, एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण किया था हेमंत कुमार जी ने। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में ये गीत। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत हेमंत कुमार का, आवाज़ हेमंत कुमार की।
1: नजरों से कह दो जी, निश

20 साल बाद इस फिल्म से बहुत ही खूबसूरत गीत सुना हेमंत कुमार जी की आवाज़ में। और आइए अब सुनते हैं एक और गीत लता मंगेशकर हेमंत कुमार की आवाज़ों में। ये भी एक बहुत ही प्यारा गीत है और इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। आइए सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम है ममता।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुना, जो इस गीत को संगीतबद्ध किया था रोशन ने। और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं हेमंत कुमार का संगीतबद्ध किया फिल्म अनुपमा का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की, अल्फाज कैफी आसमी के।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अनुपमा फिल्म से अभी आपने एक गीत सुना और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में ये बुंदेली गीत।

0: डाटा टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम लोकरंग में सही श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं आशा तिवारी का गाया ये बुंदेली गीत।

का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43।

आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से। सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और

0: मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर, प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं सुनते हैं कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। तो आपको बता दें कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना, श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। जी हां, गोस्वामी तुलसीदास जी की ये रचना आप सुनेंगे कल सुबह 6:30 पर। भूले बिसरे गीत, जी हाँ, पुराने जमाने के ये फिल्मी तराने आप सुनेंगे कल सुबह 6:40 पर। सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और सुबह 7:00 आप सुनेंगे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। प्रादेशिक समाचार कल सुबह 7:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे और सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। लोक संगीत, जहां बुंदेली गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 8:15 पर और सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सुबह 9:00 आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 10:05 पर हमारे स्टूडियो से। फोन करें गीत सुने इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनिएगा कल सुबह 10:10 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह 11:00 से। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 6:00 सुनेगा सदाबहार फिल्मी नगमे और शाम 6:15 पर बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कल की सभा में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल।

कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण। कल का विषय होगा नक्सलवाद। और ये शो तो आप सुनते हैं आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। तो अब से कुछ ही देर बाद के आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 7:20 पर सुनिएगा खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 बजे हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण। रात्रि 8:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का।

0: कार्यक्रम मंच है कि रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और रात्रि 11 बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11 बजकर 10 मिनट पर हमारी आज की सभा का समापन होगा। तो ये थी जानकारी कल और आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 होने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना।
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कल नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण को बड़ी रफ्तार देते हुए कुल 24,200 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472,29,00,000 रूपये का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया।
1: इंदौर की मेट्रो जिसकी लागत 2017 में 7,500 करोड़ का आकलन किया गया था, उसका पुनर्निरीक्षण अनुमान व कुछ क्षेत्रों में मेट्रो का अलाइनमेंट बदला गया, कहीं पर उसको अंडरग्राउंड भी किया गया, तो अब वह 12,900 के करीब उसकी लागत हो चुकी है। तो यह अतिरिक्त 5,388 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी गई और अब यह इंदौर की मेट्रो 31 किलोमीटर की करीब 2030-31 तक पूर्ण रूप से वहां पर परिचालन में आ जाएगी।
0: मंत्रि परिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगे। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में शामिल होंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना, स्वयं सेवकों की सहभागिता बढ़ाना और देश भर में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्त मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान देश भर में जागरूकता और सामुदायिक जन सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

0: जाएगा। इनमें सामूहिक प्रतिज्ञा अभियान, जागरूकता रैलियां, साइकिल रैलियां, युवा नेतृत्व वाले अभियान, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताएं, वेबिनार, विशेषज्ञों के साथ संवाद और नुक्कड़ नाटक शामिल है। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून तक स्कूल चलें अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से आठवीं तक के स्कूलों में बाल सभा का आयोजन होगा। इसके साथ ही शाला में शत प्रतिशत नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों का शाला से जुड़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। आज मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न कराई जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रख सकती है। वहीं विपक्ष भी प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसानों, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में रणनीति तैयार करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में साप्ताहिक कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 के लिए देशव्यापी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अल नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है वहां पहले से पूरी तैयारी की जाए ताकि किसी भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। खरीफ 2026 के लिए फसलवार लक्ष्य, बुआई की प्रगति और राज्यवार तैयारियों के समीक्षा करते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम आतंकवाद के खिलाफ सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि मॉनसून के आने के बाद प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल जून माह में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। प्री मॉनसूनी गतिविधियों के चलते आज भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल संभागों के 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो लोकसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। झाबुआ में आज कलेक्टर ने जनसुनवाई से पहले राणापुर में ट्रेंचिंग ग्राउंड और सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। राजगढ़ जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कुकिंग कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और ई श्रम कार्ड योजना के प्रचार प्रसार हेतु विशेष शिविर आयोजित किए गए। देवास जिले में 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्या खेत करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले को मखाना उत्पादन के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग का केंद्र बनाने की तैयारी शुरू की गई है। मंदसौर में जिला स्तरीय जन सुनवाई में कलेक्टर ने 120 आवेदकों की समस्याएं सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में जबलपुर रेल मंडल ने ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित करने में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। सीहोर में कल 17 जून को राजपूत संगठनों द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे वाले सभी किसान भैया पंचों और बिन्ना पंचों को सतीश साहू
1: और रामकुमारी बहन की राम राम, राम राम।
0: और रामकुमारी बिन्ना, इतने मुत के कगदा जो आप लाए हो अपने हाथ में, तो बताओ झट देनी कि आज अपन अपने किसान भैया बिन्ना रहो काका सुनवा रहे हैं।
1: बिल्कुल सतीश भैया, अपन को जैसे किसान वाणी में आबी को और अपने किसान भैया रहो तो बतिया भी को समय मिलत है सो कग जा तो समेट नहीं पड़त है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कैसे जा सोचत है कि कितनी जानकारी है कि जो हम अपने किसान भैया रहो के संगे साझा कर लें,
0: खूब
1: जागरूक हो गए, जानकार हो जाए। हाँ। और उको भी लाभ भी ले।
0: बिल्कुल,
1: तो यही में भैया देखो अपन बात कर रहे हैं, जैसे कि समय चल रहा है खरीफ की बोनी की तैयारी, ओ में काका करने हैं, संगे देश बंधु चित्रंजन दास जी की पुण्यतिथि है, उन पे अपन उनके बारे में चर्चा करें।
0: हाँ।
1: और संग ही भैया देखो एक बहुत ही उम्दा जो चीजें हमारे गांव के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बड़े चाव से इनको उपयोग करते हैं, खाते हैं, कछु की सब्जी बनाते हैं, कछु उबाल के खाते हैं, कछु अंगरों में दबा के,
0: हाँ बिल्कुल,
1: भरत के खाते हैं, बड़े स्वादिष्ट उनको लगते हैं। तो ये संबंध में अपन एक भेंट वार्ता सुने, कंदरुआ और महावरी की उन्नत खेती। इमें ग्राम धुरा के युवा किसान हैं हरिदास अहिरवार, और इनसे बतकाव करें अपने राजेंद्र भैया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमारे किसान भैया हैं बड़े अच्छी सुने और ये भेंट वार्ता से निश्चित रूप से लाभ ले हैं, संगे मनोरंजन तो देखो अपने कार्यक्रम में शामिल रहता ही है, तो मनोरंजन रहे और अपने किसान भैयाओं से और भी कछु बतकाव है जो अपन कर हैं।
0: बिल्कुल, अब आगामी जो खरीफ की फसलों की तैयारी हो रही, तो बिना अपन निश्चित रूप से ये पे चर्चा कर हैं, और संगे संगे जो अपने रोज के क्रम रहते हैं बिना, चाहे वो अपन अनाज के भाव बतात हों, चाहे जो है सो मौसम की जानकारी देते हों। मौसम की जानकारी तो अब खास तौर से कैसे बसकारो लग गए है, तो भाभी अपन दे हैं, मनो आप शुरू करो जो आज आप दिन विशेष कह रही थी।
1: आज भैया दिन विशेष है अपने जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हते देश बंधु चित्रंजन दास जी की आज पुण्यतिथि है, तो उनको सादर नमन करत भय हम सभी किसान भैयानों को बता दें कि देश के दिग्गज वकील जोनने के अलीपुर बम कांड में महर्षि अरविंद घोष को केस लड़ो हतो और उनके लाने बरी भी कराओ हतो अदालत से, संगे 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू के संग मिल के स्वराज पार्टी को इनने गठन भी करो हतो।
0: बिल्कुल,
1: और फिर भैया बाद में जी वकालत छोड़ के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लाओ वो में कूद गए, और 1924 में कलकत्ता नगर निगम के पहले निर्वाचित मेयर भी बने।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिन्ना,
1: और सतीश भैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हते और उनके मुख्य मार्गदर्शक भी हते, तो ऐसे महान

0: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनके चरणों में अपन इनकी पुण्यतिथि पे सत सत नमन करत हैं और इनके ही अनुसार अपन देश की सेवा और देश के समर्पण में हमेशा सभी जने
1: बिल्कुल समर्पित रहे हैं।
0: समर्पित
1: और बिना जे अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हते, निश्चित रूप से इनको जितो बखान करो तो कम है।
0: बिल्कुल
1: काय से अगर जे सर्वो अपनो सर्वोच्च बलिदान ने देते, अपनो सब कछु समर्पित आंदोलन में सम ने करते जे, तो निश्चित रूप से आज अपन स्वतंत्र भारत में सांस नहीं ले रहे होते।
0: तो
1: इन्होंने को तो जितनो इनको याद करो जाए, जितने इनके पद चिन्हों पे चलो जाए, वो कम है।
0: कम है भैया।
1: और एक बात बिना, आज की अगली चर्चा भी आप कछु देख रही थी।
0: अगली चर्चा बिल्कुल भैया अपनी बाई है के
1: जो
0: अपने ते जो अबे जो मौसम शुरू हो गया है के रिमझिम बरसात फुहारें पड़न लगी हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जून को महीना होगा और आज 16 जून भी है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये हिसाब से हमारे किसान भैया को अपनी जो खरीफ की बोनी है ओ किराने बिल्कुल सजग
1: और
0: सतर्क हो जाओ चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो यही पे अपन चर्चा कर रहे हैं भैया। तो सतीश भैया देखो, खरीफ फसल की तैयारी के लाने, खरीफ में अपन को अच्छी उपज ले भी के लाने, मानसून से पहले अपने खेतों की जो है तैयारी कर लो चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जैसो कि अपन विशेषज्ञ भी बताते हैं और अपन तो हमेशा चर्चा के माध्यम से बताते ही रहते हैं कि गहरी जुताई करके डाल दो चाहिए। ऐसे होत का है भैया कि जो अपनी माटी है वह उलट पलट हो जाते हैं और जो बड़े बड़े डीमा रहते हैं उनमें पानी समा जाते हैं और नीचे पानी जावे के लाने माने जल धारण क्षमता जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अपनी माटी में अपने खेतों में जो है नीचे तक नमी पहुंच जाते हैं और एको लाभ अपन को आगामी समय में मिलत है।
1: बिल्कुल। कैसे मिलना, देखो दिनों दिन अपने खेत जो है ठोस हो जा रहे। पहले अपन पैदल भी खेत में बस कार्य में घुसते तो खच जाते।
0: बिल्कुल।
1: अब पूरो ट्रैक्टर नहीं घुस पा रहे, उतर ठाणो रे तो जमीन इतनी कठोर हो गई।
0: बिल्कुल।
1: तो ये हिसाब से अपन को जुताई अच्छे से करो चाहिए और खासतौर से जो समय निकल गए है, जो भीषण गर्मी जब पड़त है, उस समय गहरी जुताई करके अपन को डाल दो चाहिए।
0: बिल्कुल भैया। और जब अपन गहरी जुताई कर लेते हैं एक जो लाभ है भी तो मिलता ही है और एक बात जैसे ही बूंदें गिरत है तो माटी को अच्छी भुरभुरी हो जाना चाहिए और हो ही जाते भैया। बूंदें गिरवे के बाद जो है एक बेर और अपन बोनी करवे से पहले जुताई करत है और ऐसो करवे से कहा होते भैया कि बीज की जो अंकुरण में भी सहायता होते है।
1: बिल्कुल।
0: और फलस्वरूप एक अंकुरण को प्रतिशत जो है वो अच्छो रहे थे और जब अंकुरण अच्छो हुई है 100% हुई है तो फिर देखो भैया फसल उत्पादन अच्छो आवे की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो एक लाने अपन को गहरी जुताई करके और खेत की अच्छी तैयारी कर लो चाहिए। जैसे भैया एक बात है, जैसे मकान की नींव अच्छी हम बना लें, नीचे से मजबूती दे दें अगर हम, तो आगे अपन
1: भवन भी उतना ही मजबूत,
0: भवन उतना ही मजबूत होते और कितने ही मंजिल चला ले जाए तो वो सहार जाते।
1: ऐसा ही अगर जब शुरुआत,
0: ऐसा ही बिल्कुल अगर हम शुरुआती दौर में अगर अपने खेतों की तैयारी अच्छी कर लें तो फसल अच्छी आवे से कोई रोक नहीं सके।
1: बिल्कुल। और बिन्ना अब अपन कार्यक्रम को और आगे बढ़ाए ये चर्चा में, ओके पहले सुनाते हैं संदेश।
2: अरे काय भैया, ये सब मोल लटकाए काय को दिए थे?
3: अब का बताएं भज्जा तुमके, कोनो ये कहु परेशानी हो तो बतावे, ये तो राम भाई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
2: अरे भैया ये सब का होगा, कुछ तो बताओ।
3: अब तुम्हें का बताएं भज्जा, कबहू जो ढोर बीमार, कबहू वो ढोर बीमार, कहू ये खोजा परेशानी, कहू वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
2: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगत है, ओ में आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
3: अच्छा अच्छा।
2: हाँ। हाँ। मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20।
3: हाँ, हाँ।
2: और दूसरा नंबर भी लिख लो
3: 240 845। और सीधो लगे कछु वो करना पड़े,
2: बड़े समझदार हो। हाँ। इमे कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को, वो सागर को कोड है 07582।

0: आप सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया। सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर है 9774322977।
1: एक बार फिर से बता दे भैया।
0: भैया फिर से लिख लो, इसमें कछु परेशानी नहीं। 9774322977।
1: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लो तो फिर बात साहब।
0: अरे
1: अच्छा जा बताओ भज्जा। हाँ। ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
0: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें। हाँ। लगाओ हेलो किसान वाणी में फोन।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: हर

0: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
1: कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो देखो सतीश भैया, संदेशों के बाद एक बार फिर अपन सभी किसान भैयारों को स्वागत करते हैं। और देखो भैया, चर्चा तो अपनी जारी रहे, मनो अपन
7: मनोरंजन करवा
6: दें। तो सुना थे अपन संतोष से परमार को गाव भाजो भैया हास्य गीत।
7: बिल्कुल।

0: नई मोटर को देख देख के एक ठेला पछे
1: आना।
0: कैसी कैसी कल्पना करत हैं लिखवे बारे गावे बारे में।
1: बिल्कुल भैया,
0: आनंद बरसाद मैंने
1: हास्य गीत था।
0: हाँ,
1: तो वाकई हंसी आ गई भैया।
0: बिल्कुल। हाँ। और एक बाद बिन्ना अपन अपनी वही चर्चा को फिर आगे बढ़ाऊ थे।
1: बिल्कुल भैया, तो चर्चा अपनी आगे बढ़ रही है, तो जुताई करी अपन ने और अंकुरण क्षमता बढ़ा दई, और इन सबई के लाने भैया फिर जुताई के बाद अपन को का करने है, जुताई कर ले, खेत तैयार कर ले और खेत भुरभुरे कर ले, पाटा चला के बराबर कर ले।
0: बिल्कुल।
1: अब एक ही बात अपन को करने का है भैया कि स्वस्थ और प्रमाणित बीज की व्यवस्था भी अपन को करने है।
0: बिल्कुल, जैसे अभी आप कह रही थी नी मजबूत हो,
1: बिल्कुल,
0: तो बीज भी वही नी को काम है करत।
1: बिल्कुल भैया, तो अपने खेत और ये बीज की व्यवस्था करने कैसे है भैया, अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, सिंचाई की व्यवस्था आपके पास कैसी है, इन सभी बातों को विचार अपन को कर लेने। और ओ के बाद भैया धान है, मक्का है, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, इन फसलों में से चयन करने हैं। संग में एक बात को और ध्यान रखने भैया कि फसल चक्र भी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, लगातार एक फसल नहीं बोने
1: नहीं बोने,
0: पिछली साले जोन भाई हो उखो बदल के बोने,
1: उखो बदल के बोने है, कि बहुत से लाभ अपन किसानों इनको मिला
0: था। बिल्कुल।
1: और संग में फसल चक्र के संगे जो है भैया बीजोपचार की व्यवस्था जो भी विशेषज्ञ बताते हैं उनके अनुसार करने हैं, और उन्हीं से बीजोपचार करके बोनी करने का है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और भैया संग में बोनी करवी से पहले खेत में जैविक यानी पची भई गोबर की खाद को भी बिखेर देने हैं। और एक लाभ तो असंख्य है, अनगिनत है,
0: कोई को बताने की जरूरत नहीं है। किसान भैया बिन्ना हरे तो अब खूब अच्छे से जानते
1: हैं, और जैविक खेती की तरफ पे अपन को विशेष ध्यान भी देना। तभी अपन अपने बाल बच्चों को कछु
0: बिल्कुल
1: कछु दे जैवी कछु छोड़ जैवी
0: बिल्कुल
1: सिखा जैवी, और फिर सभी व्यवस्थाओं के संगे मानसूनी फुहार पड़वे।

0: और अपने खेत में नमी को देखत भाई समय पे बोनी करें। समय पे बोनी करवे से सतीश भैया उत्पादन में बहुत ही अंतर आ जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: समय मिलवे पे खरीफ की बोनी अपन को करने हैं, सभी तैयारियां करके और संगे भैया समय को लाभ भी उठाने हैं। जैसे अब समय है, आप व्यवस्थाएं कर सकत हो, सोच समझ सकत हो, कहां से बीज लेने हैं, कौन रिश्तेदार कितने से लेने हैं, बीज कैसो है, वो की अंकुरण क्षमता कैसी है।
1: बिल्कुल,
0: समय है फट्टा पे माटी डाल के, गोबर की खाद डाल के, आप मुट्ठी भर दाने डाल के अंकुरण परीक्षण भी कर सकत हो। कैवी को मतलब जो है भैया कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, इतनो समय लेते हैं, तो हम काम भी ये तरीका से करें क्योंकि लाभ हमें पूरो पूरो मिल जाए।
1: ऐसी कमी न छोड़ो कि बाद में अपनो उत्पादन प्रभावित होवे, अपन को पछताने पड़े कि भैया इतनी मेहनत अकारत गई
0: और जो कर लेते तो जो हो जाते।
1: बिल्कुल, और बिना अब आउत है आज के अपन जानकारी वाले क्रम पे, तो जानकारी में जैसी आपने शुरू में बताई थी कि आज रज्जू भैया ने बतकाव करो है, एक बड़े अच्छे किसान हैं ग्राम धोरा के, हरिदास अहरवार इनको नाम है, और बड़ी अच्छी नौनी जो खेती करत हैं, सामान्य खेती तो करते ही हैं मिलना, और बरन बरन के प्रयोग करत हैं, बहुत प्रयोगवादी जो किसान हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो इनसे करोगो जो रज्जू भैया को बतकाव है वो अपन अपने किसानों को भी सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल भैया, तो सुनाते हैं अपन कंदरुआ और महावारी की उन्नत खेती ग्राम धुरा के युवा किसान हरिदास अहरवार के द्वारा।
1: बिल्कुल,
2: किसान भैया बिन्नारो, समय समय पे हम अपने कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान भैयारों को बुला के उनकी खेती किसानी के अनुभव आप औरों से साझा करवाते रहते हैं। तो आज यही क्रम में हमने आमंत्रित करो है ग्राम धुरा के युवा किसान हरिदास अहरवार जी के लाने, जो अपनी अन्य फसलों की खेती तो कर ही रहे हैं, संगे संगे खास करके कंदरुआ और महावरी की खेती भी कर रहे हैं। तो आज यही विषय पे इनसे अपन चर्चा कर रहे हैं। तो हरिदास भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्ते सर जी, और आकाशवाणी परिवार और तो सब किसान भाइयों के लाने हमारी दो ही हाथ जोड़ के जयराम जी।
2: तो हरिदास भैया बताओ, कंदरुआ और महावरी की खेती कैसे कर रहे हो? एक लाने सबसे पहले जमीन तैयार करवे की बात आत है, तो कैसे जमीन तैयार करत हैं?
3: जी सर जी, कंदरुआ जो है, हम तो सर कम से कम 20 साल से ज़्यादा होगा जब से कंदरुआ महावरी की खेती करत आ रहा है बिल्कुल रेगुलर। और एक लाने खेती की चर्चा करी जाए तो सर जी, ज़्यादा इसमें हैरान की जरूर बात ही नहीं है, इसको तो अच्छी गहरी जुताई करवा ले अपने बैल हों, हर से तो हर से भी जुताई हो जाते है। और हर नैया यदि किसानों के पास तो ट्रैक्टर से थोड़ी पंजी के द्वारा जो थोड़ी गहरी मिट्टी जाने हैं इसकी लाने।
2: अच्छा,
3: और फिर इसको अपने रोटावेटर से या कुलारी फरुओं से फोड़ के डीमा इसको मतलब भुरभुरी बनाने हैं जमीन के लाने, तो इसको गहरी मिट्टी की जरूरत पड़ा था सर जी, ऐसे मतलब मुलायम जमीन जाने हैं नीचे।
2: अच्छा, तो कोनो भी किस्म की मिट्टी में हो जाते हैं का जी?
3: जी सर जी, इसमें चाहे काली मिट्टी हो, चाहे लाल मिट्टी हो, चाहे पीरी टाइप की भी हो, थे कोई भी प्रकार की मिट्टी हो, तो ये फसलें इसमें अच्छी हो जाते हैं सर जी।
2: अच्छा, जमीन तैयार करत समय खाद वगैरह कितनी का डालो चाहिए, ये बारे में भी हमारे किसान भैयारों को बतावे।
3: जी सर जी, खाद तो इसमें सर अक्सर कर अगर देखो जाए तो देसी खाद के अलावा हम तो अभी तक कोनो और खाद को उपयोग ही नहीं कर हुआ है, जो देसी खाद है अपने गोबर वालों यही को उपयोग करता है सर जी, और लगभग इसको ज़्यादा खाद की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एक ट्राली खाद अपनो एक एकड़ जगह में कंदरुआ लगा सकता अपन।
2: अच्छा,
3: मान एक ट्राली खाद से।
2: तो कंदरुआ और महावरी को बीज कहाँ से ले आऊ भैया?
3: सर जी, बीज की तो हम अभी तक हमने जब से 20 को अनुभव जो हमारे पास है, जब से हम घर ही कोई बीज बनाए हैं, में रोग दोग को लगत नहीं है, तो इसको जैसे अदरक है या और अन्य चीज़ें हैं कि जो 2-3 के बाद किसान बदलवे को प्रयास करते हैं, वो बदलत भी हैं, कहते हैं किसान कि बदल के लगाओ चाहिए बीज, लेकिन कंदरुआ महावरी में सर जी रोग ज़्यादा आवे की लगवे की कोई संभावना नहीं है, तो हम तो एक ही बीज बनाए हैं 20 से, तो वही लगाओ थे हर साल।
2: अच्छा, एक एक कंदों को बीज उपचार भी करत हो का भैया?
3: जी सर, बीज उपचार करवो तो जरूरी है, बहुत जरूरी है सर जी, का है कि कभी कभी ऐसो समय आ जात के वर्षा कम या ज्यादा हो जाए तो थोड़ी सी फफूंद लगवे की माने विशेष दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ऐसे कभी कभी आ जात है।

0: का के फफूंद टाइप की लक्षक है।
1: अच्छा,
0: तो अपन पहले ही उपचार कर दें तो समस्या ही नहीं आए अपन की।
1: बिल्कुल भैया, तो बीज उपचार कैसे करत भैया?
0: बीज उपचार सर जी की कंद काटने पड़ा था, जैसे वो तो कंदरुआ बड़ा होते है 2 फुट से लेके 3 फुट तक को, 2.5 फुट 1.5 फुट इतनी लंबाई उसकी रेत है, तो उसको अपन कंद काटने पड़ा था हसिया से अपने 1 इंच 1.5 इंच के मतलब मोटी मोटी टुकड़ा बना लिए अपन, एक में से कम से कम 20 टुकड़ा बना लिए।
1: अच्छा।
0: अपनो लंबो हुई तो 5 टुकड़ा बना ली, 10 बना ली, जितो लंबो कंदरुआ हुए अपनो हिसाब से अपन 5-10 टुकड़ा बना ली उसमें से। तो ओखो अपन जैसे अपनी जो फफूंद नाशक दवाई जो है ये में ओखो घोल बना के,
1: अच्छा,
0: और ओमें डुबो दें अपन 10-15 मिनट की लाने डुबो के, और बस ओखो थोड़ी छाया में सुखा लें, तुरंत नहीं लगाऊं सर जी उसको। किसान भैया 10-15 मिनट खो या 20 मिनट खो छाया में रख के थोड़ा सुखा रहे ताकि वह दवाई वो में सूख जाए। फिर एक बाद में अपन गुड़ुआ बनाए, गुड़ुआ पहले ही से बना लें, उसमें एक खोवा खाद डाल लें सर जी, उसमें ज़्यादा खाद डाल की भी जरूरत नहीं रहती आए, वो तो अपन उसमें विशेष ध्यान रखने कि अपनी खेती मुलायम होने चाहिए, गहरी जुताई होने चाहिए, काहे वो जमीन में नीचे तक पड़ा था, बहुत नीचे तक।
1: तो भैया गुड़ुआ बना के ये पौध तैयार अपन करते हैं?
0: नहीं सर जी, पौध नहीं बना,
1: सीधे मतलब
0: सीधे रोपने से लाने कंद।
1: अच्छा अच्छा
0: जी।
1: तो भैया 1 एकड़ में बीज की बात करें तो कितना लग जाते हैं
0: इसमें सर जी? यदि ऐसा हमने अभी तौल के तो नहीं लगा हुआ, लेकिन लगभग 3 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ में अपन हो बीज की जरूरत पड़ है।
1: अच्छा अच्छा।
0: कंदरुआ की, महावरी की सर अगर बात करें तो महावरी थोड़ी कम चाहने पर है।
1: अच्छा।
0: का है महावरी को अपन एक टुकड़ा 1 कंद लगा हुए थे, और कंदरुआ के हैं वो 2 कंद लगाने पड़ा थे सर जी।
1: अच्छा, ऐसा कहा भैया?
0: इसमें 2 कंदरुआ पड़ा थे सर जी, अगर 2 लगा दिए अपन तो 2 कंदरुआ एक साथ में पड़ा थे इसमें सर। और महावरी जो है वो 1 ही लगा दी, तो 1 ही लगाओ तो 5-5 किलो 4-4 किलो 1 गुड़ुआ में से निकलत है वो।
1: अच्छा। तो भैया जाओ और बताओ कि जैसे कंदरुआ और महावरी की खेती जो उन किसान भैया रहे करबो चाहत हैं,
0: हाँ,
1: वो सही समय का है?
0: समय सर उसको जो है अभी सही चले आ रहा हो, मई जून जो अभी चल रहा है, जून में अभी लगाए कछु किसानों ने अभी लगा दो है वो 10-15 दिन पहले से, तो समय उसको सर मई जून को विशेष तौर पे सही कहा हो।
1: मतलब बरसात के पहले
0: पहले जी जी
1: शुरुआत कर दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो पहले ही लगा था सर ना, काहे खेती फिर वह पानी बरस जाए जो तो वह दब जाते है थोड़ी सी।
1: अच्छा, अच्छा।
0: पुलखर जमीन चाहने हो तो पहले से लगा देते, जमीन पुलखर बनी रहे थे।
1: तो भैया कंदरुआ और महावरी में कछु रोक दोग भी लगत हुई है, तो ये बारे में भी कछु बताओ भैया।
0: रोक दोग सर उसमें ज़्यादा नहीं लगा था, अगर यहाँ लगे किसान भाइयों के उनकी पत्ता में सुकड़ा ना हुई थे कभी कभी, तो जो अनुमान लगाए कि इसमें फफूंद थोड़ी सी लग रही है अंदर से जमीन में, ऊंची ऊपर तो लगभग की कोई संभावना नहीं है, तो लगते ही नहीं है वो, तो चिकनो पत्ता होते तो कीट वगैरह कछु लगते ही नहीं है सर जी।
1: अच्छा।
0: और ऐसा लगे कहूँ पत्ता इतना सुकड़ा दिखा जैसे कि पान जैसे पत्ता होते हैं सर जी, तो वो में अपन फफूंद नाशक जो अपना जो ट्राइकोडर्मा होते है जैविक ट्राइकोडर्मा, नीमू ट्राइकोडर्मा, एक अपन हर पेड़े के ना थोड़ा थोड़ा चम्मच से डाल दें, और थोड़ी थोड़ी ऐसी निंदाई टाइप की कर दें कि वो ओके पेड़े को मिल जाए, तो उसे वो ठीक हो जाता है। नहीं तो एक आध बार गौमूत्र छिड़काव भी कर दें, नीम को पत्ता जो है वो भी उपयोग में ले सका थे।
1: अच्छा,
0: एक आध दो बार तो मैं ज़्यादा रोग लगता ही नहीं है सर जी, ज़्यादा दवाई की जरूरत नहीं पड़ती आयो में।
1: अच्छा भैया जा बताओ कि कंदरुआ और महावरी की जो फसल है वह कितने समय में तैयार हो जाते है?
0: लगभग 4 महीना में सर जी फसलों की पड़ जात है, लेकिन अगर वो सही अपन हो पकाने हैं तो जो अपनो जून से लेके और अक्टूबर दीपावली के बाद कातक के महीना के बाद अगन लगा थे, अगन पूछ तक वो पक्के में लोग तैयार हो जा सर जी।
1: अच्छा।
0: अगर पहले से बेचने हैं तो कुंवर के महीना से भी अपन कातक के महीना भी बेच सका दो के लाने,
1: तो जैसे लगभग कातक के आसपास
0: जी जी
1: कंदरुआ और महावरी की फसल आ जाती है।
0: खुदाई चालू यदि अपन करने हैं सर जी तो अपन खोज सका थे वो।
1: तो और भैया फसल के दौरान और कौन सी देखरेख की जरूरत होते है कंदरुआ और महावरी की खेती में, ये बारे में भी कछु हमारे किसान भैया को बतावे।
0: देख देख में सर जी उसमें झकड़ा की जरूरत पड़ा था, झकड़ा नहीं हो तो मैं कोरैया चाहने पड़ा था सर जी।
1: अच्छा, वो काय किला ने भैया?
0: वो तो जैसे ही अपन ने जमीन में लगा तो 10-15 दिन में वो में बॉल निकला था जमीन के अंदर, जैसे बॉल दिखी अपन हो लाल लाल।
1: हाँ।
0: तो वो के पहले ही अपन ज्यादा बड़ी नहीं हो पावे यार, गड्ढा करके यार एक एक कोरैया हर पेड़े के ना अपन गाड़ दें, कम से कम 5-7 फुट लंबी भी हो और ज्यादा भी हो तो वहाँ नीचे

0: नहीं पढ़ाते आए।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो भैया जैसे एक एकड़ से फसल कितनी निकल जाती?
0: फसल तो सर जी एक एकड़ से जो मान ली के वैसे हो तो अपन ने तो लगभग नहीं अंदाज करो के कितनी निकल जा, लेकिन अगर एक एकड़ में किसान भाई लगा दी में तो हमारे अनुमान से 2.5 से 3 लाख तक की फसल मिल सका था बन गिला ने।
1: अच्छा, लगत काट के?
0: लगत काट के सर जी।
1: बहुत बढ़िया भैया, मतलब कंदरुआ और महावरी की उन्नत खेती करके किसान भैया आ रहे हैं, अच्छो मुनाफा ले सकते हैं। तो हरिदास भैया जा और बताओ कि कंदरुआ और महावरी के लाने अच्छो बाजार कहाँ मिल जाते हैं? तई बेच देते भैया स्थानीय बाजार में कि कहूँ बाहर भी भेजा
0: तो? अबे तो सर जी हम सायपुर जो है, सायपुर में मंडी लगा थे, पक्की मंडी है, तो अबे अपनी मंडी में सायपुर ही में बेचा थे के लाने, बाहर भेजा थे होते ऐसे व्यापारी। और यदि गांव देहात में भी कोई समय हो तो वो तो मेलों में दुकान लगा ली अपन, तो वो 40-50 रुपया किलो तक अपन खुद मेलों ठेलों में बेच लिए। और हम तो हाट बाजार में भी सर ले आऊ थे सागर, तो इतने भी वो को अच्छो रेट मिल जाए सर जी।
1: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, अच्छो रेट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपन कमाएं अपनी जो भी फसल ले रहे हैं। वो ख़ास तौर से भैया आपने कंदरुआ और महावरी की खेती की जो बात करी, अपने अनुभव हमारे किसान भैयाओं से बांटे, और निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भैया हैं भी कंदरुआ और महावरी की खेती की प्रेरणा ले हैं आपसे और अपनी खेती को उन्नत बनाए हैं।
0: जी सर,
1: आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी नौनी जानकारी दी, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते सर जी।
2: तो देखो सतीश भैया, अब ऐसी उम्दा जानकारी सभी किसान भैयाओं ने सुनी, कंदरुआ और महावरी की उन्नत खेती। ग्राम धुरा के युवा किसान हरिदास अहिरवार से बतकाव कर रहे थे अपने राजेंद्र नारायण तिवारी रज्जू भैया।
3: बिल्कुल, और अब बिना एक बात का अपन सुनो आवे बारे हैं।
2: एक ही बात भैया फिर रुख करते हैं मनोरंजन की तरफ। तो सुना थे अपन कैलाश खरे अलंकार को गाव भाव जो लोकगीत।
3: बिल्कुल।

0: तो राम कुमारी बिन्ना बड़ो अच्छो लोक भजन अबे जो कैलाश खरे अलंकार को गाव हो अबे अपन उन्होंने सुन रहे थे
1: बिल्कुल भैया।
0: और एक बात बिन्ना अपन आ चुके हैं वो पड़ाव पे के अनाज के भाव बताए जाए।
1: बिल्कुल भैया, अनाज के भाव की अगर आपने बात करी है तो गेहूं रो 2265 से 2650 रुपया, चना 3260 से 5695 रुपया, मसूर 5200 से 8940 रुपया, मटर 2253 से 3000 रुपया, सोयाबीन 5200 से 7330 रुपया, तिवरा रहो भैया 2350 से 3180 रुपया और सरसों रहो 3500 से 7320 रुपया।
0: बिल्कुल बिन्ना, और अब आज के तापमान की बात करें तो आज को अधिकतम तापमान रहो है 38.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहो। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जो रहो है 22.6 डिग्री सेल्सियस, जो भी सामान्य से 2 डिग्री मनोजो नीचे रहो है। और आर्द्रता की बात करें तो बिन्ना भुंसरा की रही है 60% और संजा बेरा की रही है 77%। और आज सवेरे 8:30 से संजा के 5:30 तक की जो वर्षा दर्ज करी गई है सागर की बा 8.7 मिलीमीटर। अब ना एक के संगे आप समा हो रहो तो सभी जनों को सतीश साहू
1: और राम कुमारी बहन की
0: राम राम,
2: राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अरे सुन तो,
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अब आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण।

0: प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
0: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ईआरसीपी प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो, तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
0: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है। घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
0: विषय यह उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: पर भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं
1: जी,
0: उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है, लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां पीएम 2.5 और पीएम 10 ये दो जो तत्व है, मतलब पीएम 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और पीएम 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है, और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना BP है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है उसके प्रति, अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में

0: फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
1: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
0: जी।
1: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहाँ पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
0: जी।
1: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
1: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR उसने अभी एक पिछले 3-4 साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के

0: हृदय के बड़ा नज़दीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूँ कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था, तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छाव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है
1: जी।
0: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
1: जी।
0: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है, गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है,

0: एक दूसरे के पूरक हैं।
1: जी, हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी,
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है, जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है, जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है, जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है, जो बायोफ्यूल अलाइंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है, जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इंपॉर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पर अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, इसके अंतर्गत आज आप सुन रहे थे पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धियां। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं जावेद अली की आवाज में जोधा अकबर फिल्म का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और इसे संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिदा। कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं चंदन दास की आवाज़ में निदा फाजली साहब के ये अल्फाज़।

चंदन दास की आवाज़ में अभी आपने निदा फाजली साहब के लिखे ये दोहे सुने, और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ज़मीर काज़मी का कलाम पंकज उदास की आवाज़ में।

पंकज उदास की आवाज़ में अभी आपने एक गज़ल सुनी। इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: website www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने,

0: आए जाए। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप

0: पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मनचाहे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सबसे पहली फरमाइश सुनते हैं। हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश है, व्हाट्सएप पर हमें भेजी है। ये सुनना चाहते हैं भूट चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति सिंह और वंशराज सिंह। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से सुनना चाह है रोशन देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से फरमाइश की है मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में गुलजार का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम गुलामी।

गुलामी फिल्म से अभी आपने गीत सुना और आइए अब सुनते हैं अगली फरमाइश। अगला गीत जो पसंद किया है वो हमारे इन श्रोताओं ने पसंद किया है, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से सुनना चाहते हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमारी, निर्यात कुमारी, कोजागिरी कॉलोनी कोपरगांव से सुरेश मलोदे, वर्षा मलोदे, श्रद्धा मलोदे, मानसी मलोदे, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश की है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रूपेश सिंघई, महेश सिंघई, प्रज्ञेश सिंघई, प्रीतेश सिंघई और समस्त सिंघई परिवार। शिवाजी चौक कटनी से सुनना चाहा है अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनोचिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा। आप सभी सुनना चाहते हैं सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज़ों में यादों की कसम फिल्म से ये गीत, अल्फाज आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

यादों की कसम, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना था जो फिल्माया गया था फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। उन्हीं की फिल्म से गीत पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। SH बिहारी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है। सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता। ग्राम बिनेका तहसील बंडा जिला सागर से बलराम सेन, अरविंद सेन, रेखा सेन, रविंद्र सेन, संगीता सेन, महेंद्र सेन, रामदेवी सेन, सुरेंद्र सेन, नंदिनी सेन, रिया, गौरव, राज, आर्यन, कौशल, दीप्ति। गोपालगंज से इस गीत की फरमाइश की है संदीप रोहताश ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से पसंद किया है नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद ने। सदर बाजार कुरावली से सुनना चाहते हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीता कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। सिकंदरा राव से सुनना चाहते हैं मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन। तो आइए सुनते हैं सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों को फिल्म का नाम प्यार झुकता नहीं में।

प्यार झुकता नहीं इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं त्रिनेत्र फिल्म से ये गीत, आवाज कुमार सानू की, अल्फाज समीर के, संगीत आनंद मिलिंद का। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। करणवीर हाउस भुंचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से सुनना चाहते हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजीत। इसी गीत की फरमाइश की है नूर महल महसौल सीतामणि महाराष्ट्र बिहार से, मसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज। इसी गीत की फरमाइश की है छत्रपति संभाजी नगर सुरेवाड़ी औरंगाबाद से, सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, अंशुमन, बेबी, ओबी। तो आइए सुनते हैं सभी की फरमाइश पर त्रिनेत्र फिल्म से ये गीत।

त्रिनेत्र फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम मनचाहे गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: आज के फनकार।

के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक।

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44। फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

1950 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिलबर को

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की किताब पर चंद मोती चमकीले हैं तो चंद मोती मटमैले। किताब के कुछ पन्नों पर आंखें ठहर जाती हैं तो कुछ को नजरअंदाज कर पन्ने पलट दिए जाते हैं। बस यही फलसफा रोजमर्रा की जिंदगी का भी है। कुछ चमकीले लम्हों को हम संजो लेते हैं स्मृतियों की तिजोरी में, कुछ उदास लम्हों को अपनी जिंदगी की किताब से बाहर कर देते हैं। कुछ लम्हों को हम अपनी जिंदगी का आईना बना लेते हैं और देखा किया करते हैं खामोशी से।

दिल का तार चुपके से किसी के तार से जुड़ गया। खोजती आंखों में ख्वाहिशें पनाह पाने लगें, किसी से मुलाकात के जतन होने लगे। आंखें मिली, दिल मिल गए तो यूं दूर रहकर दिल को तकलीफ देना नाइंसाफी लगने लगी, तो फिर मिलने की दुआएं की जाने लगी।

को समझाया बगैर उनके जीना सीख ले, पर जिद्दी दिल कहां मानने वाला, वो उन्हीं के पहलू में जा बैठा। दिल को क्या खबर थी उनके संग मन्नत का धागा बांधना, मुश्किलों के पुल से गुजरना होगा। मोहब्बत से बावरे हुए मन ने न समझी ये बात और चढ़ता रहा मुश्किलों के पहाड़।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पता नहीं था जुड़ेंगे दो दिलों के तार कुछ यूं, एक साथ दिल की धड़कने गाएंगी प्रेम का तराना। पता नहीं दिल के एहसासात उनके दिल तक पहुंच जाएंगे। पता नहीं था मोहब्बत ये छोटा सा लफ्ज लिख देगा जिंदगी की वसीयत। पता ही नहीं था वादा होगा चांद सितारों से साथ निभाने का।

बहती नदी की मानिंद हो जाती है जिंदगी जब चलती है प्यार के बयार। जिंदगी की कश्ती हौले हौले तैरती है लेकिन वक्त की सुई तेज चलने लगती है। एक लड़की जब प्यार के रथ पर सवार होती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो सिर्फ प्यार बोलती है, प्यार उड़ती है, प्यार पहन अपने सपनों की नगरी में चल पड़ती है, विचरती रहती है।

सूरत। उनकी आवाज के पार भी एक आवाज थी। उनकी आवाज ने जिंदगी की तपती धूप को नरम छांव में तब्दील कर दी। उनके अल्फाज दिल की घाटी में चंचल नदी की तरह उतरने लगे। आसमान की तरह उनका कद आंखों में बस गया। बस उस रोज से होठों पर तिरता है मोहब्बत का नगमा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के

भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।